FM 100.8 MHz और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 16 जून वर्ष 2026। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे

0: खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 500,000 आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं सुब्रमण्यम भारती के विचार।
3: जब तक हम में वैर भाव है, अधः पतन ही होगा हमारा। यदि हम में संगठन रहेगा, तभी जीवन मधुमेह हो सकता है। यह ज्ञान हम सब में रहे, इससे अधिक फिर हमें चाहिए ही क्या। सबका सबल सहारा लेकर ही हमारा पूर्णोद्धार होगा। जाति भेद, वर्ण भेद आदि से उत्पन्न परिणाम भीषण रोग के रूप में हमारे समक्ष फैलता जाएगा, जिससे हमें सतर्क होना चाहिए। हमारे देश में जितने भी लोग हैं, उनमें वे सभी ब्राह्मण हों या ब्राह्मणेतर, सभी समान हैं। सबका समान महत्व है। वंश की भिन्नता से ऊंच नीच का भाव हो ही नहीं सकता। हमारे ही साथ जो भिन्न जाति के लोग रह रहे हैं, उनके साथ हमारा द्वेष कदापि नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष में हजारों जातियां हैं तो रहें, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति इनमें फूट डालने का प्रयास करे। और फिर हम इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रश्रय ही क्यों दें। हम एक माँ की संताने हैं, अतः आपस में किसी कारणवश कलह हो भी जाए तो यह परस्पर का सौहार्द भाव भला कैसे मिट जाएगा। ऐसे समय दूसरा आकर हस्तक्षेप करे तो हमें ये सही नहीं। हम किसी भी कार्य को करें, इससे पूर्व हमारे देश की प्राचीन गरिमा एवं उसकी उच्च संस्कृति की महानता का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। हमारा भारतवर्ष संपूर्ण भूमंडल में सबसे महान है। ज्ञान में, धार्मिक कृत्यों में, योग में, दान में, सम्मान में, धैर्य में, वीरता में एवं तत्वग्रहण में अद्भुत क्षमतावान है वो। भारत यह नामोच्चारण ही समस्त भय एवं पारस्परिक वैमनस्य को दूर कर देता है। शत्रु को स्नेह दो, घनीभूत काले धुएं में क्या दीप ज्योति की शिखा नहीं दिखती? वैसे ही शत्रु के हृदय में भी कृष्ण का निवास होता है, उन्हीं कृष्ण का जिन्हें तत्वदर्शी प्रेम कहते हैं। यदि व्याघ्र भी मृत्यु भय बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो तो उसे भी आहत मत करो। जिस जगन माता ने उसे वह रूप दिया है उसको उसी प्रकार नमन करो, वहीं पर वह वंदनीय है। समाज में स्त्री पुरुष दोनों का समान महत्व है। एक के बिना दूसरा वास्तव में अपूर्ण है, निरर्थक है। नारी शब्द स्वाभिमान का सूचक है। स्त्री समाज को बंधन मुक्त करने के लिए शिक्षा ही परम साधन है। वयस्क होने से पूर्व स्त्रियों का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवाह के लिए बाध्य भी नहीं करना चाहिए। विवाहोपरांत यदि किसी कारणवश वो पति से अलग हो जाना चाहती है तो उसे इसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और ऐसी दशा में उसे उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। पिता की संपत्ति में लड़की का भी समान अधिकार हो। विधवा विवाह का सभी द्वारा अनुमोदन हो। यदि कोई लड़की अविवाहित रहकर ही अपना कार्य करना चाहती हो तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विवाह के बाद पति से अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष से वो न बोले, ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पुरुष के समान ही उसे भी उच्च शिक्षा हेतु समस्त सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। उसे उसकी योग्यता अनुसार नौकरी भी मिलनी चाहिए। राजनैतिक क्षेत्र में भी प्रवेश हेतु उसे पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रारंभिक उपायों से यदि स्त्रियों का मार्ग निर्देशित किया जाए तो आगे चलकर स्वयमेव वे अपने अधिकार प्राप्त कर लेंगी।
2: विचार बिंदु में अभी आपने सुब्रमण्यम भारती के विचार सुने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

पवन सुत हनुमान की महानता का बखान यदि सहस्त्रों मुखों से भी किया जाए तब भी संपूर्ण महानता को नहीं बताया जा सकता। आप उपकारी हैं, अपने भक्तों के हितकारी हैं, हे राम भक्त पवन सुत श्री हनुमान। आप अपने समस्त भक्तों पर सर्वदा अपना प्रेम यूं ही बनाकर रखेंगे। इसी कामना के साथ प्रस्तुत है श्री हनुमंत महिमा किशोर यदुवंशी और साथियों के स्वरों में।

भोर की पहली किरण भक्तों के हृदय में श्री राम का पावन नाम लिखती है और संध्या का सुहाना पल मन मंदिर में प्रभु श्याम के नाम के दीपक को प्रकाशमान करता है। सांसों की डोर को प्रभु को समर्पित कर आइए रम जाते हैं प्रभु के गुणगान में हरिओम शरण के गाए इस भजन के माध्यम से।

तीनों लोकों में जो विराजमान हैं, जो जग के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, जिनके चरणों की धूल से जीवन साकार हो जाता है, निर्बल को बल देने वाले, अज्ञानी को ज्ञान देने वाले, श्रद्धा से जिनका नाम लेने से दया की बौछार करने वाले, शंभू बाबा के पावन नाम का भक्ति वंदन आइए सुनते हैं ए हरिहरन के स्वर में।

मोह माया को त्याग कर श्री हरि का भजन करने से भक्त जीवन रूपी इस भवसागर से पार पाता है। ये आँखें प्रभु के दर्शन के लिए हैं, ये कान हरि का गुणगान सुनने को हैं। अंत में इस नश्वर संसार से विदा लेते समय मात्र प्रभु का नाम ही हमारा साथी होगा और हमारे साथ जाएगा। तो प्रभु के नाम को हृदय में विराजमान कर प्रस्तुत है अनूप जलोटा की गाई ये भक्ति रचना।

हे प्रभु श्री कृष्ण, आपके दर्शन पाने की प्रतीक्षा करते करते भक्तों के नैन अब दुखने लगे हैं। आपके भक्त आपका रास्ता निहार रहे हैं। हे श्याम, इस असहनीय वेदना से अपने प्रिय भक्तों को उबारना आपका कार्य है। आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम।

अनुपमा देश पांडे की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। श्रोताओं, हर दिन होता है खास और इसे खास बनाती हैं उस दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, और 16 जून की इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं को साझा करने आपसे हाजिर हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त प्रतिभा कार्यक्रम आज की बात में। श्रोताओं, सर्व विदित है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। इसी कारण 16 जून साल 2010 को भूटान में तंबाकू कंट्रोल एक्ट 2010 लागू हुआ, जिसके तहत तंबाकू की खेती, उत्पादन, निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कारण भूटान को तंबाकू के उत्पादन और बिक्री पर व्यापक रोक लगाने वाला दुनिया का पहला देश माना जाता है। हालांकि भूटान ने राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू की बिक्री पर इससे पहले

वर्ष 2004 में भी रोक लगाई थी, जिससे यह तंबाकू की बिक्री पर देशव्यापी रोक लगाने वाला पहला राष्ट्र बना था। बाद में वर्ष 2021 में भूटान ने अपने कानून में कुछ बदलाव किए और नियंत्रित परिस्थितियों में तंबाकू की बिक्री और खरीद की अनुमति दी। श्रोताओं, 16 जून साल 1903 को अमेरिका के डेट्रॉइट में हेनरी फोर्ड और उनके साथियों द्वारा फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की गई। हेनरी फोर्ड का सपना था कि वे एक ऐसी कार का निर्माण करें जो आम लोगों की पहुंच में भी हो। वे कई बार असफल हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 16 जून साल 1903 को फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत 28,000 अमेरिकी डॉलर से की गई। ये कंपनी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना ने न केवल कार उद्योग को एक नई दिशा दी, बल्कि हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन तकनीक ने आधुनिक औद्योगिक उत्पादन की नींव भी रखी। श्रोताओं, आज दक्षिण अफ्रीका में मनाया जाता है युवा दिवस। ये दिवस 16 जून साल 1976 को हुए स्वेटो अपराइजिंग की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन दक्षिण अफ्रीका के स्वेटो क्षेत्र में हजारों अश्वेत विद्यार्थियों ने रंगभेद सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन का मुख्य कारण स्कूलों में अफ्रीकांस भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने का सरकारी निर्णय था। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलीबारी की, जिसमें अनेक छात्र मारे गए और कई छात्र घायल हुए। 12 वर्षीय छात्र हेक्टर पीटरसन की मृत्यु इस आंदोलन का प्रतीक बन गई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं के साहस, उनके बलिदान और समाज में निभाई गई उनकी भूमिका को याद करना है। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ चितरंजन दास देशबंधु की। देशबंधु अर्थात देश का मित्र। देशबंधु की ये उपाधि इनके देश के लिए किए गए निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। इन्होंने वकालत छोड़कर स्वयं को पूरी तरह देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। साल 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की नीतियों का विधान परिषदों के भीतर जाकर विरोध करना था। देश के लिए अटूट प्रेम की मिसाल देकर 16 जून साल 1925 को इनकी मृत्यु हो गई। आपका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। श्रोताओं, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव का निधन 16 जून साल 1606 में लाहौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कराया, जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इन्होंने मुगल सम्राटों द्वारा किए गए हर दबाव को झेला और उसके बावजूद भी अपने सिद्धांतों और मान्यताओं से समझौता करने से इनकार कर दिया। इन्हें सिख धर्म के प्रथम शहीद गुरु के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। इनकी शहादत ने सिख धर्म और इसके इतिहास को एक नई दिशा दी और अन्याय के विरुद्ध सत्य और धर्म के लिए दृढ़ रहने की प्रेरणा भी इन्होंने दी। गुरु अर्जुन देव की शहादत आज भी साहस, त्याग और आस्था की अमर मिसाल है। श्रोताओ, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा। श्रोताओं, विविधा के इस अंक के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त प्रतिभा। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। श्रोताओं, आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। ये दिवस उन लाखों प्रवासी श्रमिकों को समर्पित है जो अपने घर परिवार से दूर रहकर कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की ये कमाई का एक अमूल्य हिस्सा अपने परिवारों के लिए भेजते हैं। इस आर्थिक सहायता को कहा जाता है प्रेषण। प्रवासी श्रमिकों के इस योगदान को सम्मान देने के लिए आज के इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। इस दिन को मनाने की शुरुआत 16 जून वर्ष 2015 से की गई। इसकी पहल अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने की थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2018 में इसे वैश्विक मान्यता दे दी गई। घर से दूर रहकर अपनों के सपनों को संवारने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों का भेजा हर रुपया मात्र धन नहीं होता, उसमें उनकी मेहनत, प्रेम और परिवार के प्रति अटूट समर्पण छिपा होता है। श्रोताओं, सोच कर देखिए, एक व्यक्ति उस आंगन, उस गांव, उस शहर से दूर रहकर कड़ी मेहनत करता है जहां वो पला बड़ा है। ये मेहनत केवल स्वयं के लिए नहीं, अपने पूरे परिवार और उनके अच्छे आज और सुनहरे भविष्य के लिए की जाती है। उस प्रवासी के भेजे मेहनताने में से घर चलता है, व्यवसाय चलता है।

0: लगता है घर के बच्चे कल को स्कूल जाकर सुनिश्चित करते हैं अपना उज्जवल भविष्य। इसी कारण ये प्रेषण केवल पैसे का नहीं बल्कि प्रेम, जिम्मेदारी, उम्मीदों और परिवार के प्रति समर्पण का है। दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ से अधिक प्रवासी मेहनतकश लोग अपने परिवार की सहायता के लिए नियमित धन भेजते हैं। इस धन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों का जीवन प्रभावित होता है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी प्रेषण का बहुत बड़ा योगदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सुरक्षित, सस्ती और सुलभ धन प्रेषण सेवाओं को बढ़ावा देना भी है। आज डिजिटल तकनीक के कारण धन भेजना पहले की तुलना में अधिक सरल और सहज हो गया है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में इसकी लागत और पहुंच को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ये दिवस हमें परिवार के महत्व का भी एहसास कराता है। जब कोई अपना हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी अपने परिवार की खुशियों और ज़रूरतों का ध्यान रखता है, तो ये दर्शाता है कि परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और जिम्मेदारियों का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस उन अनगिनत मेहनतकश लोगों को नमन करने का दिन है जो अपनी मेहनत की कमाई से न केवल अपने परिवारजनों का जीवन बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी अमूल्य योगदान देते हैं। उनका संघर्ष, उनका समर्पण और उनका प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि अपनों के लिए किए गए त्याग और जिम्मेदारियों में निहित होती है। घर से दूर रहकर सपने बुनना आसान नहीं होता। अपनी खुशियों से समझौता करके परिवार की मुस्कान बचाए रखना आसान नहीं होता। आपके द्वारा भेजी गई हर छोटी बड़ी सहायता केवल धन नहीं होती बल्कि उसमें आपका प्यार, त्याग, संघर्ष और अपने परिवार के प्रति समर्पण छिपा होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस पर हम उन सभी प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को हृदय से धन्यवाद देते हैं जो दूर रहकर भी अपने परिवारों की ताकत बने हुए हैं। आपकी मेहनत से न केवल घरों के चूल्हे जलते हैं बल्कि बच्चों के सपने, माता पिता की उम्मीदें और परिवारों का भविष्य भी रोशन होता है। आप सभी को करते हैं धन्यवाद और इसी के साथ संपन्न करते हैं कार्यक्रम विविधा को। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः संबंधः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम, प्रवास, डिजिटल, तंत्रज्ञान, रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्तवार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीयराष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद

0: संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। कार्बो काडो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1307वीं कड़ी। अब से कुछ ही देर बाद यानी प्रातः 7:10 पर आनंद लीजिएगा श्री रामचरित मानस गान पाठ का भाग होगा 126। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण, जिसमें आज किशोर होते बच्चों को समझें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर चर्चा की जाएगी। दिन में 2:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज आप सुनेंगे संकर नस्ल

के पशुपालन और डेयरी व्यावसायिक विषय पर वार्ताकार होंगे नवल किशोर सिंह। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात होगी अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजना विषय पर। इसी कार्यक्रम में व्यक्ति विशेष के अंतर्गत आज आप जानेंगे भारतीय समाज सुधारक चित्तरंजन दास के विषय में। और इसी कार्यक्रम में आज सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विषय पर चर्चा की जाएगी। श्रोताओं, संध्या 5:45 पर प्रसारित किया जाता है कार्यक्रम उत्तरायण, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, देश बंधु चित्तरंजन दास की जयंती और योग और ध्यान से मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे स्वस्थ रहे विषयों पर चर्चा की जाएगी। शाम 7:00 किसान भाई जुड़ेंगे अपने कार्यक्रम किसान वाणी से, जिसमें आज की बातें होंगी नेमटोड प्रबंधन क्यों जरूरी विषय पर। इसी कार्यक्रम में खेती बचाओ अभियान सतत कृषि प्रणाली के अंतर्गत फसल चक्र के लाभ विषय पर वार्ता प्रसारित होगी। साथ ही सुनिएगा पशुओं के लिए संतुलित आहार का महत्व विषय पर चर्चा। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मशरूम पोषण और मूल्य संवर्धन की नई दिशा विषय पर डॉक्टर स्वाति गर्ब्याल से भेंट करता होंगी नेहा जोशी। संध्या 6:41 पर आप आनंद लेंगे भक्ति संगीत का, कलाकार होंगे हरिओम शरण और लखवीर सिंह लखा। श्रोताओ, प्रातः 8:30 पर शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित गंगाधर राव तेलंग का राग अहीर भैरव में गाया ख्याल, और पुनः शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 10:30 पर। श्रोताओ, लोकगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:30 पर कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक मंजरी में, जिसमें हमारे आज के कलाकार होंगे राजन राम और प्रभा बिष्ट। सुबह 11:30 पर कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों के कार्यक्रम लोकसुर में, दिन में 2:00 कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत में, और संध्या 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैलसर में कलाकार होंगे राजन राम। श्रोताओ, सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:05 पर सबरंग में, दिन में 1:15 पर रात्रि 8:00 सबरस में, और रात्रि 9:30 पर गजलों के फरमाइशी कार्यक्रम महफिल के तहत। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकते हैं सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार में, सुबह 11:00 सैनिकों के लिए में मेरी पसंद का समय रहेगा दोपहर 12:00, दिन में 2:45 पर आप सुनेंगे एक ही फनकार, सदाबहार फिल्मी गीतों का समय होगा अपराह्न 3:00, शाम 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष के तहत। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रस्तुत है समूह स्वरों में श्री रामचरित मानस गान पाठ का 126वां भाग।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के

फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी।

अभी आपने समूह स्वरों में श्री रामचरित मानस गान पाठ का 126वां भाग सुना। संगीतबद्ध किया था सतीश भाटिया ने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

पहले मुख्य समाचार। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में सहकारिता विभाग के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। कहा, राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने केदारनाथ यात्रा से जुड़ी भ्रामक सूचना और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊधम सिंह नगर के बागवाला क्षेत्र में निर्मित 1800 से अधिक आवासों को आवंटन जल्द किया जाएगा। और आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में निबंधक सहकारी समितियां कार्यालय के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ

0: शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नए पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों से जुड़ी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण, दस्तावेज प्रबंधन, शिकायत निवारण, नामांकन सत्यापन, ऑडिट प्रबंधन तथा MIS रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉ. रावत ने चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। नवनियुक्त सहायक सहकारी निरीक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अधिकारी सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने प्रत्येक विकासखंड में सहकारिता नेटवर्क को मजबूत बनाने का आह्वान किया। डॉ. रावत ने बताया कि सरकार प्रत्येक विकासखंड में एक सहकारिता ग्राम विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार ने केदारनाथ यात्रा से संबंधित भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखने तथा ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं और मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में आयोजित बैठक में श्री जोशी ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा। उन्होंने यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, शटल सेवा, यातायात और पार्किंग व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक मशीनरी तथा राहत और बचाव संसाधनों की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। टिहरी गढ़वाल में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय 25 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने वन विभाग को पिरुल संग्रहण के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रीमती अग्रवाल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
1: 25 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जनपद को विभिन्न विभागों में अलग अलग कार्य के लक्ष्य दिए जाते हैं, उसकी प्रतिपूर्ति के संबंध में बैठक ली गई। तो विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए कि वो टाइम से लक्ष्य को पूर्ण करेंगे और उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें उपलब्ध कराना चाहिए। किसी लक्ष्य को पूर्ण करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी टाइमली फ्लैग करेंगे ताकि उसको रिजॉल्व कराया जा सके।
0: राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लगभग 24,000 आवेदनों में से करीब 22,000 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। बैठक में बच्चों के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को सभी विकास खंडों के टीकाकरण संबंधित आंकड़े स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक बच्चे का समय से टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में ऊधम सिंह नगर जिले में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। जिले के बागवाला क्षेत्र में लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1800 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। श्री किशन ने कहा कि बागवाला में बनाए गए फ्लैट लगभग तैयार हैं और उनका आवंटन जल्द शुरू किया जाएगा।
3: 1872 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, ये हमारे फ्लैट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। आपके माध्यम से जितने हमारे लाभार्थी हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द वो अपने इंस्टॉलमेंट जो भी निर्धारित है, जैसे 3 लाख रुपए प्रति लाभार्थी निर्धारित है, वो अपने इंस्टॉलमेंट दे दें, ताकि हम उनकी रजिस्ट्री और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं इसके अलावा उनको फिजिकल पोजेशन फ्लैट का दे सकते। इसके क्रम में हम लोग लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं दूरभाष के माध्यम से एवं पत्र के माध्यम से भी, ताकि जल्द से जल्द जो लाभार्थी अंश है वो हमें प्राप्त हो और हम आगे की कार्रवाई कर सकें।
0: आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय

0: योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि ये योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक

0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और निर्वाचन अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य जारी है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री आर्य ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और त्रुटि रहित बनाने में डिजिटाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने का आह्वान किया। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी सभी अभिलेखों और प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित प्रभारियों का कार्य में तेजी लाने तथा इसकी दैनिक प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमेरिका ईरान में समझौता की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी हुई है। अमर उजाला लिखता है अमेरिका ईरान में युद्ध विराम करार, हुरमुज जलमार्ग खुलेगा। दैनिक जागरण ट्रंप के हवाले से लिखता है दोनों देशों ने 107 दिन पुरानी जंग खत्म करने के लिए समझौते को दिया अंतिम रूप। देहरादून के बैरागीवाला में भाजपा नेता की हत्या पर हिंदुस्तान की सुर्खी है बैरागीवाला बवाल में 150 लोगों पर केस और एक गिरफ्तार। देहरादून के लच्छीवाला नेचर पार्क पर नवोदय टाइम्स का शीर्षक है एक दिन में 7,500 पर्यटक आए, 6 लाख से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में सहकारिता विभाग के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। कहा राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने केदारनाथ यात्रा से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत उधम सिंह नगर के बागवाला क्षेत्र में निर्मित 1800 से अधिक आवासों का आवंटन जल्द किया जाएगा। और आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजन राम और प्रभा बिष्ट के गाए कुछ कुमाऊनी लोक गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजन राम के गाए इस झोड़े के साथ।

0: गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रभा बिष्ट के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक मंजरी में आइए अब सुनते हैं प्रभा बिष्ट का ही गाया एक और कुमाऊनी लोकगीत।

प्रभा बिष्ट के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा के खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।

0: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defence sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Slovakia has filed this report.
5: Several historic decisions with the potential to significantly strengthen India-Slovakia relations were taken during the Prime Minister's visit to Bratislava. 11 MOUs were signed yesterday during Prime Minister Narendra Modi's visit. These agreements are expected to enhance cooperation in areas such as defense, civil nuclear energy, tourism, advanced technologies including quantum communication and artificial intelligence and higher education. During talks between Prime Minister Narendra Modi and Slovak Prime Minister Robert Fico, both sides also decided to establish a joint working group to strengthen cooperation in combating terrorism. Prime Minister Modi will depart from Bratislava today and travel to France to participate in the G7 summit. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
2: Prime Minister Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Our correspondent has filed this report.
6: India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement as well as initiatives such as Bharat Innovates, IMIS, and India's role as the official AI partner country at upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing and resilient supply chains. Significantly, many of the priorities priorities identified by the French G7 presidency, including reducing imbalance, international partnerships and artificial intelligence, closely align with India's strengths and interests. Ankit Kumar, Akashwani News, Avignon, France.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIR News Alerts. And for details of stories and more,

अभी आपने पंडित गंगाधर राव तेलंगे का राग अहीर भैरव में गाया ख्याल सुना। आपके साथ तबला संगत की थी सारंग पांडे ने और तानपुरा पर आपका साथ दिया था विकास ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवो टेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा वैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ETF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ETF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वो जेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दामुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेड़के के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए, वहीं श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर के कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 9:05 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आपके ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस और आपके पत्रों से प्राप्त फरमाइशी फिल्मी गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुर, लय और ताल से सजे इस संगीतमय सफ़र में। और इस सफ़र में आज की ये महफिल सजी है आपकी ही पसंद के कुछ गीतों से।

श्रोताओं, कहते हैं कुछ आवाज़ें समय के साथ कभी नहीं बदलती, कभी पुरानी नहीं होती। आप उनको जितना सुनेंगे आपका दिल सुकून से भर जाएगा, आपके होठों पर मुस्कान आ जाएगी, आपकी आंखों में कभी चमक आएगी और कभी नमी। ऐसी ही एक आवाज़ है हेमंत कुमार की। आज महान गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की जयंती है। उनकी जयंती के इस अवसर पर हम उन्हें करते हैं याद और श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। हेमंत कुमार को अपनी इस अनूठी आवाज़ के लिए कहा जाता रहा है वॉइस ऑफ गॉड। वे केवल एक गायक नहीं थे, उनकी गायकी एक एहसास थी, एक ऐसा एहसास जो हमारे दिलों में उतर जाता है और जो हमें उस सुकून से भर देता है शायद जिसकी तलाश हमें हमेशा रहती है जब दिल थोड़ा सा रोता है। उनकी गहरी, मधुर और सुकून देने वाली आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती है। कहते हैं शायद ये शरीर चला जाए पर हमारी आवाज़ हमारी पहचान बनकर हमेशा जीवित रहती है, और ऐसी ही हेमंत कुमार की आवाज़ हमेशा हमारे साथ जीवित रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो एक बार पुनः गायक और संगीतकार हेमंत कुमार को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं वो गीत जो आप सभी ने अपने प्रिय गायक हेमंत कुमार को याद करते हुए सुनने की इच्छा जाहिर की है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, फिल्म 16 साल से, हेमंत कुमार की जादुई आवाज़ अभी आपने सुनी, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने। और इस गीत को सुनने की इच्छा आप सभी ने जाहिर की थी। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनयना सुकन्या और सविता भाकरे इसी गीत को सुनना चाहते थे। राजबिराज नेपाल से श्याम कुमार हाकू, तारा देवी, राजन हाकू, कल्पना राय, सोमनीमा, पिंकी, खुशबू, श्रुति, पूजा, पूर्णिमा हाकू और सन्नी हाकू इसी गीत के इंतजार में थे। जिला खरगोन सनावल मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से हमारे श्रोता थे लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर और इनके पूरे परिवार ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे श्रोता थे रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीति छाबड़ा। रानीगंज बंगाल से थे रवि और इंदर और दिल्ली से थे ध्वनि और सानवी। जलगांव जंक्शन से इसी गीत को सुनना चाहा था दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। मेरठ कैंट से इसी गीत के फरमाइश करता थे दिग्दर्शन, कविता, अनिल जैन, संजय ढिंगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय। श्रोतो, जब हम बात करते हैं डिस्को किंग की तो हमारे जहन में जो नाम आता है वो नाम है हमारे पसंदीदा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के ये उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर कई दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। आज भी अपनी कलाकारी का जलवा ये यूं ही बिखेर रहे हैं और हम सब के लिए अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते रहेंगे। फिल्म डिस्को डांसर में जब हम डिस्को डांस करते हुए मिथुन चक्रवर्ती को देखते हैं तो खुद ब खुद हमारे पैर थिरकने लगते हैं। और डिस्को डांसर इस फिल्म को न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में भी लोकप्रियता मिली। मिथुन चक्रवर्ती के अभिनय में दमदार एक्शन तो दिखाई देता ही है, लेकिन कई बार वो हमें भावनात्मक किरदारों में दिखते हैं और उनके हर किरदार को सराहा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की, क्योंकि इनका आज है जन्मदिन। तो हमारी और आपकी ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं हमारे फेवरेट हीरो मिथुन चक्रवर्ती को। और आपके लिए पेश कर रहे हैं इनका वो गीत जो आज भी लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है और जो हमें हमारे पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म डिस्को डांसर की।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म डिस्को डांसर का ये गीत। आवाज़ें थी विजय बेंडिक्ट और साथियों की। अनजान ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था बप्पी लहरी ने, और पसंद आप सभी ने किया था। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान बाबू। मोटका माफी जिला खंडवा से हमारे श्रोता थे जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देव किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल। इसी गीत के इंतज़ार में थे रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के। इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की थी अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर ने। ये सभी श्रोता हमारे नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से थे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता थे सोहन जोशी और पायल जोशी। गुजरात गांधीग्राम से थे प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। इसी गीत को पसंद किया था मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू सालदारानी और हीना कौसर ने। इसी गीत के फरमाइश करता थे ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना ताई, हीरामणि, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा। मित्रनगर बीट शहर महाराष्ट्र से इसी गीत के इंतज़ार में थे विकास, रेखा, अदिति और वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से थे आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। इसी गीत को सुनना चाहते थे पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू।
1: जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: गीत निर्झर, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनादे की आवाज में शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा श्री 420 फिल्म का गीत, और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी साथी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर इसी गीत के इंतज़ार में हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहरकर, निर्मला और विशाल। मलकापुर से हमारे श्रोता हैं नारायण इंगले, सोपन तायड़े और आशीष मोहरकर। इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन ने। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना। इसी गीत को पसंद किया है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े ने। इसी गीत के इंतज़ार में है ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजपति, काजल पूर्वी, हेजल राजेश और रेशमा साहू। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश रखते हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, शुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है रुपेश संगई।

महेश प्रज्ञेश प्रीतेश और इनके पूरे परिवार ने। आप सभी श्रोता हमारे पनभड़ी महाराष्ट्र से हैं, बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा श्राविश्ता, मोहम्मद नसीब पलक नुबना और यश मंसूरी। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं श्री 420 फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

नमन और अपार। इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज आर्यन, आरोही एशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और इनके सभी साथी। दतरंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, विनीता वर्मा, लीलावती और रुद्र वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन और ईशांत। पाकिजा रेडियो वैष्णव कॉलोनी सनावत से इसी गीत का इंतजार कर रहे हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आज़ाद रोड सनावट से इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश रखते हैं सलमा खत्री, सुमैया, आयशा भी खत्री, सादिया भी खत्री, जिक्रा और मोहम्मद सगर खत्री। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं वापस फिल्म का ये नगमा।

गीत निर्जय इस कार्यक्रम में अगला गीत अब हम शामिल कर रहे हैं फिल्म वापस से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत और शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और पसंद है आप सभी की। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव, सिया जाधव। जालना शहर से हमारे श्रोता हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम सुभाष, चंदन एकनाथ और संगीता। इसी गीत के इंतज़ार में हैं गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय और आपकी अगली फरमाइश के साथ हम हैं हाजिर। श्रोताओं, आपकी अगली फरमाइश का गीत है फिल्म शर्मीली से। इस गीत को नीरज ने लिखा है और नीरज के लिखे इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने और संगीत से संवारा है एसटी बर्मन ने और इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है हमारे इन सभी साथियों ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा इसी गीत को सुनना चाहते हैं।

गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या। इसी गीत के इंतजार में है कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं प्रतीक राय, रोशन राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से इसी गीत के इंतजार में है अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से इसी गीत को सुनना चाहते हैं विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा, कुश और इनका पूरा परिवार। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी नीरा वर्मा और ज्योति प्रहलाद वर्मा। शाहूनगर यवतमाल से इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और प्रियांशी ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हिंगड़ी आलौर जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी। इसी गीत के इंतजार में है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे, करुणा, मीना अश्विनी और विपुल कामरे। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं शर्मीली फिल्म का ये नगमा।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गीत ने

जय फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं बॉबी फिल्म का गीत, और इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है हमारे इन सभी साथियों ने। समता नगर काष्टी से लक्ष्मण जगताप, हरिभाव बीडवे, किरणवीर और इनके सभी साथी। गढ़ेगांव जिला पूना से हैं श्रेया सिंधे और मानशी सिंधे, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजदरी और निशा और इनके घर के सभी सदस्य, इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है। गुरमीत सिंह मीता, ये हैं साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से हमारे श्रोता है विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पाली, सुनील पाठक और विनोदपुरी। इसी गीत के इंतजार में है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे कागज पर उतारा आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

गीत निर्झर कार्यक्रम में अब अगला गीत पेश कर रहे हैं फिल्म साथी से। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है नौशाद ने और आवाज़ें मुकेश और सुमन कल्याणपुर की हैं। और इस गीत को सुनने की इच्छा हमारे इन सभी साथियों ने जाहिर की है, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और इनका परिवार इसी गीत को सुनना चाहते हैं, अडार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, नाजम मंजिल महसौल सीतामढ़ी वार्ड नंबर 28 से हमारे श्रोता हैं अकरम हुसैन।

इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार से इसी गीत के इंतज़ार में है, मोहम्मद आसिफ खान और निगहत परवीन। मुंती चक भागलपुर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं दिलीप कुमार सोनी। खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से इसी गीत को पसंद किया है पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविका ने। गंज टुंडवारा से हैं शमशुल कमर, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से हमारे फरमाइश करता है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं साथी फिल्म का ये नगमा।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर के समापन पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में समीर और फैज अनवर का लिखा और नलदीन श्रवण के संगीत से सजा साजन फिल्म का गीत। और इस गीत के पसंद करने वाले हमारे सभी साथी हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत वर्मा और सोनम वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के इंतज़ार में हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष। गांव नधाना पंजाब से हमारे श्रोता है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, साबिर राही, मेहरा जहां। ये सभी श्रोता हमारे आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं। राजस्थान सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा से हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। इसी गीत के इंतज़ार में हैं मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजश। चंडीगढ़ सिटी से फरमाइश करता है शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं साजन फिल्म का ये नगमा।

साजन फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत नजर अब संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का ये कार्यक्रम। फिर होंगे हाजिर आपकी ही फरमाइश के कुछ नए नगमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त

0: इस गीत के साथ ही अभी आपने सुना फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय आकाशवाणी का। ये
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सपरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हेमा सरदेसाई के गाए इस गीत के साथ।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
3: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
2: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
3: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
2: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
3: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
2: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आइए सुनते हैं गुलाम अली को।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुनील,
3: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
4: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सपरंग इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से।

जगजीत सिंह की गाए इस गज़ल के साथ ही मिले जुले गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में

जगजीत सिंह की गाए इस गज़ल के साथ ही मिले जुले गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी देहरादून है। 10:30 हुए हैं, सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग के अनुसार करीब 1000 रिक्तियों के सापेक्ष 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। आयोग ने उम्मीदवारों को सूचित किया कि उनके कट ऑफ नंबर और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड सहकारिता विभाग के नए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में निबंधक सहकारी समितियां कार्यालय के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नए पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण दस्तावेज प्रबंधन शिकायत निवारण नामांकन सत्यापन और ऑडिट प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस अवसर पर विभागीय मंत्री ने चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ यात्रा से संबंधित भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखते हुए ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जिला कार्यालय सभागार में केदारनाथ यात्रा तथा मानसून सीजन आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, शटल सेवा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर मशीनरी और राहत बचाव संसाधन पहले से तैनात रखने को कहा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता से जुड़ी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। देहरादून में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि करीब 20,000 शिक्षकों की इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों में TET अनिवार्यता को लेकर अपनाए गए मॉडलों और निर्णयों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 88% से अधिक गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभियान की समीक्षा की। उन्होंने गणना फार्म वितरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों की सराहना करते हुए फार्मों के डिजिटाइजेशन कार्य के निर्देश दिए। डॉक्टर जोगदंडे ने मतदाताओं से नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो गणना फार्म के साथ BLO को उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि 8 जून से 7 जुलाई तक घर घर भ्रमण के दौरान मतदाताओं से कोई अन्य दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में ऊधम सिंह नगर जिले में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। जिले के बागवाला क्षेत्र में लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1800 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला

0: शहरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशन ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म के गीत, और हमारी आज की फिल्म है साल 2007 में रिलीज हुई जब वी मेट। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त प्रतिभा का स्नेहिल नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर बहार में।

श्रोताओ, आज फिल्म निर्माता और निर्देशक इम्तियाज़ अली का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम पेश कर रहे हैं इन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म जब वी मेट के गीत। 2007 में रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हमें नज़र आते हैं करीना कपूर और शाहिद कपूर। इस फिल्म के निर्माता धीलन मेहता ने श्री अष्ट विनायक सिनेविजन लिमिटेड के अंतर्गत जब वी मेट फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म में करीना के चुलबुलेपन और शाहिद कपूर का शांत गंभीर रूप काफ़ी पसंद किया गया। एक हर दिल अजीज फिल्म के निर्देशक इम्तियाज़ अली को हमारी और आपकी ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जब वी मेट से।

श्रोताओं, बात करें जब वी मेट फिल्म की, तो जितना इस फिल्म को पसंद किया गया, उतने ही शौक से इस फिल्म के गीत संगीत को भी सराहा गया। मोहित चौहान, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, उस्ताद राशिद खान, उस्ताद सुल्तान खान, जावेद अली, शान, मिक्का सिंह की आवाज़ें इस में हमको सुनाई देती हैं। गीतकार हैं इरशाद।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सर्वहाय। और इस कार्यक्रम में आज एक ही फिल्म के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं जब वी मेट फिल्म के गीत। श्रोताओं, जब वी मेट फिल्म की कहानी की अगर बात की जाए तो गीत यानी करीना कपूर एक चुलबुली सी लड़की ट्रेन यात्रा के दौरान मिलती है आदित्य कश्यप यानी शाहिद कपूर से, जो एक उद्योगपति हैं और फिलहाल अपनी ज़िंदगी से काफ़ी उदास। गीत का चुलबुलापन, हर परिस्थिति को हंसते खेलते जी लेने का जज्बा आदित्य की उदासी को छूमंतर कर देता है। और जब गीत जिंदगी के उदासी भरे पलों में परिस्थितिवश पहुंच जाती है और आदित्य एक सफल उद्योगपति बनने के बाद वापस गीत से मिलने आता है तो एक शांत उदास गीत को देखकर आदित्य का मन दुखी हो जाता है। और अब आदित्य गीत का चुलबुलापन अपनाकर गीत की जिंदगी को वापस रंगों से भर देता है और दोनों खूबसूरत जिंदगी की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं और खुश मिजाजी के साथ एक जिंदगी को जीने लगते हैं।

जब भी मैट फिल्म के एक गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार अब यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये कार्यक्रम। फिर होंगे हाजिर चंद नए फिल्मी नगमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त प्रतिभा को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना शहीद फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और राजेंद्र मेहता की आवाज़ें थी, राम प्रसाद बिस्मिल के शब्द थे और प्रेम धवन का

0: संगीत।
1: अब हम आपको सुनवा रहे हैं ओम शांति ओम फिल्म का गीत, जिसे गाया है केके ने। विशाल ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

सैनिक भाइयों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फैज़ अनवर का लिखा और साजिद वाजिद के संगीत से सजा दबंग फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, अब पेश है चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर ने। गीत को कागज पर उतारा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

गैंगस्टर। सैनी भाइयों, अब हम आपको सुना रहे हैं इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है केके ने। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा है और प्रीतम ने सजाया है संगीत से।

वीर ज़ारा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए को संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

फौजी भाई अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ कलाकार हैं विमला बोरा और साथी।

0: एएसआई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो, सारा सामान आईएसआई का ही है।
0: जब से आपने आईएसआई के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। आईएसआई के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
2: लोक सुर कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं राजीव बहुगुणा।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से समय श्रोता सुन रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। लीजिए अब सुनिए कुमाऊनी लोकगीत स्वर कल्याण बोरा का।

कुमाऊनी लोकगीत के बाद चलिए गढ़वाली लोकगीत का आनंद लेते हैं और आपको सुनवाते हैं चौफुला समूह स्वरों में।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

श्रोता कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं। श्रोता इस समय सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

तो श्रोताओं, ये गज़ल सुनकर आपको याद आए होंगे जाने माने शायर शहरयार। शहरयार मुंबई गए नहीं, लेकिन उन्होंने जो गज़लें इन फिल्मों के इस गमन फिल्म के लिए लिखी वो बेहद मशहूर हुई। और इसके बाद मुजफ्फर अली के निर्देशन में एक और फिल्म का निर्माण हुआ, जो कि एक कालजयी फिल्मों में से एक है। साल 1981 में उमराव जान का उन्होंने निर्देशन किया। मिर्ज़ा हादी रसुआ के सुप्रसिद्ध उर्दू उपन्यास उमराव जान अदा पर आधारित इस फिल्म में मुजफ्फर अली के शानदार निर्देशन और बेहतरीन कला निर्देशन के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। और ये फिल्म जो थी वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। रेखा उमराव जान की भूमिका में थी, इसके अलावा फारूक शेख, नसीरुद्दीन शाह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। और इस फिल्म के जो नगमे गज़लें थीं वो बेहद मशहूर हुई, क्योंकि वो शहरयार साहब ने ही अपने कलम से लिखी। और जितनी लोकप्रियता इस फिल्म के नगमों को मिली, उतनी ही लोकप्रियता का जो शिखर छुआ वो इस फिल्म के संगीतकार खयाम ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए सुनते हैं उमराव जान फिल्म से ये खूबसूरत गज़ल।

श्रोताओं, साल 1978 में उनका काव्य संग्रह हिज्र के मौसम और 1985 में ख्वाब का दरबंद है प्रकाशित हुआ। शहरयार तब तक उर्दू शायरी के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हो चुके थे। हालांकि वो साहित्य और फिल्मी दुनिया के बीच संतुलन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्हें फिल्मों में गाने लिखने से परहेज नहीं था, लेकिन उनकी शर्त थी कि फिल्म तो ऐसी हो जिसमें वो गाने लिख सके, यानी कहानी में गीतों की गुंजाइश होना ज़रूरी है। और इसी बीच शहरयार साहब की नज़में, गज़लें, मुशायरों और पत्र पत्रिकाओं के ज़रिए दुनिया भर में धूम मचाती रहीं। और उन्होंने मुजफ्फर अली की फिल्म जूनी के लिए भी गाने लिखे। हालांकि वो रिकॉर्ड तो हुए, लेकिन फिल्म पूरी बन ना पाई और गाने भी रिलीज़ नहीं हो पाए। मुजफ्फर अली के निर्देशन में बन रही एक और फिल्म अंजुमन के लिए भी शहरयार ने खूबसूरत नगमों को पिरोया।

पुरस्कारों और सम्मानों की बात करें तो अखलाक मोहम्मद ख़ान शहरयार साहब को साल 2008 के लिए 44वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वो उर्दू के चौथे साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान से नवाजा गया था। इससे पहले फिराक गोरखपुरी, कुर्रतुल ऐन हैदर और अली सरदार जाफरी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। समकालीन उर्दू शायरी के जगत में मुख्य भूमिका निभाने वाले शहरयार को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दिल्ली उर्दू पुरस्कार और फिराक सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से समय समय पर नवाजा गया। अखलाक मोहम्मद ख़ान शहरयार साहब इस फ़ानी दुनिया को 13 फरवरी 2012 को अलविदा कह गए। अपनी बेहतरीन शेर व शायरी के ज़रिए वो हर पढ़ने वाले को चैन व सुकून देते रहेंगे।

0: सब स्वस्थ होने ला, कुशल मंगल होने ला। बस हम लोग यही चाहूँ कि जब हम स्वस्थ रहूँ, कुशल मंगल रहूँ, तब हम लोग अपन ध्यान धरना दगड़ा दगड़ा घर परिवार में और रूप ध्यान धर सको। किले कि दगड़ियो हमारे घर में हमार सयान हमार नानतीन सब कुछ हम है जुड़ी हुई हुई। नानतीना का अगर हम बात करूँ तो दगड़ियो आज वक़्त में बढ़ती हुई उम्र हमार नानतीना की उना शरीर में उनार मन में कत को प्रकार विचार होने। बात अगर हम किशोरावस्था करूँ तो किशोरावस्था में जीवनक सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण यह बदलाव हो यह दौर हों जब हमार मन में कतक विचारों को उथल पुथल हैं। यह बखत हम इस बाबुन के और नना बीच मतभेद हों जस्त हमन के लागू कि भली कह हमार बात नहीं सुनना या भली कह बात न करना लग रहा है। लेकिन दगड़ियों नना में होने वाले बदलावों के समझण और उन्हें दगड़ सही तालमेल बैठना बहुत जरूरी है ताकि वो एक जिम्मेदार नौजवान बढ़ सके। यह बखत उन्हें में शारीरिक बदलाव ले उन्हें और वो बहुत तेजी तेजी दगड़ इतु जल्दी होनी जय कारण वो परेशान ल होनी और चिंतित ल होनी। दगड़ी उन्हर भावनाओं में जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव उन्हीं तो यश में उन्हर दगड़ हमन के डांट फटकार बटी ना बल्कि एक भल दगड़ बचारी उन्हें दगड़ व्यवहार करण से। हर बच्चे अलग अलग हों हर बच्चे पर अलग अलग गुण होनी तो यह रख लीजिए कभी ले अपन नना तुलना आप घर जोला किशोर हमारी नानतीन छन इन्हें तुलना एक दूसरा जगह कभी ले नहीं करना चाहिए। और दूसर हम क्या करनो कि हम उनको दो चार डांट फटकार देने और गुस्से में दो चार बात ले कर देने। लेकिन यह उम्र में उन्हें दगाड़ हमन के उपदेश देने जरूरत नहीं थी बल्कि उन्हें दगाड़ भले के बात करना बहुत जरूरी छो ताकि उन्हें आपको हम दगा सुरक्षित समझो और अपन मन में होने वाले उतार चढ़ाव जो बदलाव होने उन्हें को हमन के बता सको। दगड़ यो बखत में नंतिन जाने कि हमन के थोड़ा आज़ादी ला मिलो और हमन के थोड़ा स्पेस मिलो उन्हें के थोड़ा हम एकांत तो दूँ लेकिन उम्र ज़्यादा हद तक उन्हें नहीं छोड़ो और कभी ले उन्हें तुलना नहीं करूँ। और दूसर नंतिन जानी हम स्वतंत्र रूप पर इतके उतके जूँ हमन के रोक टोक नहीं लागू तो हम स्वतंत्र रूप पर इतके उतके थे उनको भेजूँ। लेकिन दगड़ में उन्हें दगड़ कुछ सीमा तय करूँ कि वो कहाँ जानी कदगा जानी और कदो वक्त तक लीजिए भेज जानी तो ये छोट छोट बातों ध्यान धरवे और भले कह उन्हें थे प्यारल बुले भी हम ले उन्हें बढ़ती हुई उम्र में उन्हें दगड़ उन्हें मदद कर सकूँ ताकि उनमें ओणे वाले बदलावों कारण वो चिंतित न हो और परेशान नहीं हो। तो कार्यक्रम में और लापदगा बातचीत आखिर के लेकिन यह पहली हम सुनो इनर बात।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
4: अरे बुद्धू हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
5: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: स्वागत है एक बार फिर अब उस लोग योग कार्यक्रम में। देखो ये हमार वेदों में कही जरो कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ महिलाओं को सम्मान दी जा वहाँ साथ साथ देवता निवास करने। और ये बात है हमारे देश में हर कोई जानू ले। यही बार में देखो हमारे सरकार ले एक योजना चले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह एक उद्देश्य ची कि चेली बेटी उनके बचूँ और उन्हें शिक्षित करें। यह योजना दगड़ियो सब ने पहली 22 जनवरी 2015 में हरियाणा पानीपत में यह योजना शुरू कर दी थी। उद्देश्य यही थी कि घटते हुए जो लिंगानुपात थी और जो कन्या भ्रूण हत्या होने लग रही थी वो रोकना के लिए यह योजना चलाई गई थी ताकि चेली बेटी के शिक्षा ले मिलो सुरक्षा ले मिल बेर उन्हें सुनिश्चित कर बेर उन्हें एक सुरक्षित वातावरण दें यह योजना का मुख्य उद्देश्य।

0: सोची।
1: देखो ये योजना भारत सरकार द्वारा कन्या शिशु के लिए जागरूकता निर्माण करण और महिला कल्याण में सुधार करना के लिए शुरू करी गई थी और ये कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम दे गई। एक महिला विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास यूं सब नक एक संयुक्त मिलवेरियो पहल छी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना की। चिली बेटी के सामाजिक स्थिति में भारतीय समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लेना के लिए यह योजना शुरू करी गई थी और यह महिलाओं के सम्मान दें उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक उलझ जीवन जी सको यह सब बातों को ध्यान में धरते हुए सरकार द्वारा यह योजना शुरू करी गई थी। लेकिन समाज में चिली बेटियों के प्रति सोच बदलने में यह योजना बहुत कारगर साबित होने और जो चल चलिन में जो भेदभाव थी वो लगातार कम हो रहा और इमें ही हमारे सरकार सुकन्या समृद्धि योजना ले इमें शुरू करी और ये शुरुआत ले 22 जनवरी 2015 में हरियाणा में करेगी ताकि उन्हें के आगे के भविष्य के लिए उन्हें के कोई अपन शिक्षा के लिए कोई परेशानी न हो और वो आगे के ये अपन पढ़ाई लिखाई ले कर सको। देखो रे सुकन्या समृद्धि योजना शुरुआत ले हमार सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा रूप में शुरू करी गई कि लेके देखो यो हम सब जानो जब समाज में महिला पुरुष द्वे बराबर पढ़ी लिखी हाल द्वे बराबर हाल और लिंगानुपात ज़्यादा अंतर नहीं हो तो तब हम समाज ले भल बाटा तरफ भल स्थिति में आ सको और हम समाज एक बहुत सुशिक्षित और सभ्य समाज बढ़ सको और यह कह लीजिए देखो कि भाई हमारे चेली बेटी ने एक शिक्षा ले बहुत ध्यान में धरी गए ताकि हमारे चेली बेटी ने आदो में शिक्षा नहीं रोको वो अपन पढ़ाई लिखाई में पूरा कर सको। तो कार्यक्रम में और लापूदा गया बातचीत हम करो कार्यक्रम में आगे का वर्णन और कन्या आप मनोरंजन सुनो यो गीत

0: वो हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। नमस्कार, मैं उमा जी नाम बुलानू।
0: तो उमा जी आपूल बता तो आपको जो कुरुसिया सामान बनो लाग रहा है, यो काबटी आपूल सीखो और कब सीखो?
1: यह हम सहेली सदस्य पति सीखो, इन्हों हमका पहले वही सिखा। बिहार में एक संस्था आ रही थी, उन्होंने हमका सिखाया हर एक मतलब पैटर्न सिखा और हर एक मतलब फूल सिखाई।
0: उमा जी अब तो आपको कुरुसी पहली ला ऊंची है या संस्था द्वारा जब आपको सिखा आप शुरुआत यही पे करे?
1: ना ना, ये कुरुसिया हमका पहले थोड़ी बहुत ऊंची, ज्यादा नहीं ऊंची। तो उन्होंने हमका थोड़ी बहुत सिखा, जैसे की फूल बनून और मतलब गुलाब बनून और डेजी बनून, ये चीज हम उन्दी सीखो।
0: अच्छा, और एल अगर मैं वर्तमान वक्त एक बात करूँ तो के आपको सीखा लो?
1: आजकल हम जब फर्स्ट में हम जब से गुलाब बनून सीखो, फिर मैजिक रिंग सीखो और उबादा ये चाबी छल सीखी थोड़ी बहुत।
0: तो जब आपको एक सीखना चाहना

दगड़ियों माठू माठू के बखत लग हुणो आपू सब है कार्यक्रम में विदा लेना आगिन के आपू दगड़ फिर भेंट हुई पर वह पांडे के आपू अनु दियो अनुमति नमस्कार। और आज यह कार्यक्रम प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत।

0: दगड़ियों माठू माठू के बखत लग हुणो आपू सब है कार्यक्रम में विदा लेना आगिन के आपू दगड़ फिर भेंट हुई पर वह पांडे के आपू अनु दियो अनुमति नमस्कार। और आज यह कार्यक्रम प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत।
1: यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप

0: नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व संख्या के बावजूद निर्धारित समय पर सभी प्रमुख घाटों और मार्गों की सफाई पूरी की गई, जो नगर निगम की सुव्यवस्थित कार्य योजना और कर्मचारियों की अथक मेहनत का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चंपावत जिले में लगभग 3.5 महीने से चल रहा मां पूर्णागिरि मेला संपन्न हो गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इस वर्ष मेले में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, जबकि वर्ष भर में मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख से अधिक रही। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता थी।
1: इस बार का मेला जो है विगत वर्षों की अपेक्षाकृत जो है अवधि इसकी लंबी रही है। ये 100 दिन से ज़्यादा ये मेला चला है और इस मेले में अभी तक जो है लगभग 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेला जो है वो बड़ा निर्बाध रूप से चला है और जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं उनको जो सुविधाएँ प्रदान की जा सकती थी, जो जो कमियाँ थी उसको सुधार किया गया, उनको सभी सुविधाएँ प्रदान की गई और जो श्रद्धालु सुविधाएँ थे उनको और भी बेहतर किया गया। इसमें भारतीय रेल ने भी हमारा सहयोग किया, नगर पालिका और जो जिला पंचायत जो इसकी जो मूल संस्था है जो इसको चलाती है उन लोगों के द्वारा भी बहुत बढ़िया काम किया गया है। तो एक बड़ा ही अच्छे क्रियान्वयन जो है मेले का यहाँ पर किया गया है और वो मेला समाप्त हुआ, लेकिन जो हमारा जो दर्शन का कार्य है वो अभी भी निरंतर चलता रहेगा।
0: देहरादून जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी KK मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 19 जून को पुलिस लाइन देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित करीब 770 से अधिक लोग भाग लेंगे। योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के तहत 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों लाखामंडल और हनोल में भी कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का शीघ्र समाधान किया जाएगा। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 88% से अधिक गणना फॉर्म वितरित, अब डिजिटाइजेशन पर दिया जा रहा जोर। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। और चंपावत जिले में मां पूर्णागिरि मेला संपन्न, इस वर्ष 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत, आगाज कर रहे हैं जमीर काजमी के कलाम से, आवाज पंकज उधास की।

और अब सुगम संगीत के आखिर में पेश है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में वली यासी का कलाम।

मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल ना पाएंगे। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज सुनिए कड़ी संख्या 1307।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मन भावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी

0: पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुम्दी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुम्दी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुम्गी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IVRS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना

0: पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
1: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
0: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
1: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
2: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
3: सू
0: जी,
3: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
0: जी हाँ।
3: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
0: जी डॉक्टर साहब।
3: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
0: मैं पूछती हूँ।
2: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
0: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
0: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
0: क्या गिन रही हो?
4: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
0: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
0: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
0: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
0: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
0: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
0: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना,

0: हाँ हाँ
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉनसी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओह जॉनसी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।

0: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू, मेरी दोस्त।
2: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
3: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू।
2: हाँ जॉन्सी।
1: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी।
1: एक
2: बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
1: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
3: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?

0: हाँ, कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ,
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं,
0: लेकिन सू कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस।
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू,
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू,
1: हाँ,
0: मास्टरपीस।
1: हाँ,
0: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
5: वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोता भी सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं गढ़वाली लोकगीत के साथ। गायिका हैं राधा रावत।

और गढ़वाली लोकगीत के बाद आइए आपको अब सुनवाते हैं एक कुमाऊनी लोकगीत, स्वर दिया है आनंद सिंह नगरकोटी ने।

संगीता जोशी के गाय से गढ़वाली लोकगीत के साथ उत्तराखंड की प्रादे के लोकगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर

0: राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपने वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफ़ी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग

0: मिलेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत

0: के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बकरी चौगरखा। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर उमा नौलिया।
3: हमारे देश में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। यह सीमांत किसानों व महिलाओं को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले एक दशक में देश में बकरी पालन व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। 2019 की 20वीं पशु गणना के आधार पर देश में बकरियों की संख्या लगभग 148 मिलियन के साथ ही भारत द्वितीय स्थान पर है। उत्तराखंड में लगभग 13.71 लाख बकरियां हैं, जिसमें से लगभग 26% बकरियां अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जिले में पाई जाती हैं। चौगरखा का मूल प्रजनक क्षेत्र चितई से दनिया गांव तक फैली चौगरखा पट्टी को माना जाता है। इसके अलावा यह बकरी उत्तराखंड के अन्य जिलों जैसे चंपावत, बागेश्वर एवं नैनीताल में भी पाई जाती है और आने वाले समय में यह और भी व्यापक और संगठित होगा। देश में विभिन्न राज्य एवं क्षेत्रों में बकरियों की अलग अलग नस्लों

पे फार्म खोले जा रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य मांस एवं प्रजनक बकरियों का उत्पादन है। जिन बकरी पालकों ने नस्ल का चुनाव नस्ल की अनुकूलता एवं जानवरों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर किया है उनके जानवरों का स्वास्थ्य एवं उत्पादकता अच्छी रहती है। भारतवर्ष में बकरियों की 34 नस्लों का वर्गीकरण किया गया है एवं उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा चुका है। उत्तराखंड के व्यवसायिक बकरी पालकों उद्यमियों के लिए नस्ल विशेष के चुनाव एवं प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। हमारे पूर्वजों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में की जलवायु दाने चारे की उपलब्धता तथा मानव माव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बकरियों का पालन किया और निरंतर सैकड़ों वर्षों के प्रयास से बकरियों की विभिन्न नस्लों का विकास भी किया। भारत

हमारी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9% है। बकरी पालन से हमें दूध, मांस, चमड़ा व खाद प्राप्त होता है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत से शुरू किया जा सकता है। पारंपरिक बकरी पालन धीरे धीरे व्यवसाय का रूप ले रहा है। ये नस्लें अपने क्षेत्र में जहाँ की जलवायु में अधिकतम उत्पादन देती हैं तथा अनुकूलित होने की वजह से मृत्यु दर भी कम होती है। चौगरखा क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली बकरियाँ उस क्षेत्र के विभिन्न रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्जित कर लेती हैं, साथ ही क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले चारे दाने के प्रति अनुकूलन कर लेती हैं। कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लों की उत्पादकता को हम निम्न उत्पादकता की श्रेणी में रखते हैं, जबकि वास्तव में बहुत सी नस्लों की उत्पादन क्षमता से हम अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि उच्चतम उत्पादन क्षमता प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रकार के प्रजनन प्रबंधन, राशन, आवास व देखरेख की आवश्यकता होती है वह उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है। अधिकांश बकरी पालन उसकी उत्पादकता के लिए आवश्यक जरूरी खाद्य सामग्री का 1/4 ही प्रदान कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका उत्पादन भी प्रभावित होता है। वातावरण की उपयोगिता को देखते हुए चौगरखा पर्वतीय राज्यों में अपने क्षेत्र विशेष में सर्वोत्तम उत्पादन एवं लाभ देती है। शारीरिक विशेषताएं और प्रजनन की बात करेंगे तो चौगरखा एक छोटे आकार की बकरी है। यह काले, भूरे एवं सफ़ेद रंगों में पाई जाती है। इसके चेहरे पर नथुनों के दोनों तरफ सफ़ेद या काले रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। इसका थूथन नुकीला होता है। नाक का उभार तोते की चोंच की तरह, जिसे रोमन नोज कहा जाता है। नर व मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं। कान चपटे, लटके तथा मध्यम आकार के होते हैं। पूंछ छोटी तथा ऊपर की ओर मुड़ी होती है। चौगरखा बकरी के चुनाव हेतु सावधानियां। बकरी शुद्ध नस्ल की एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, साथ ही नस्ल के अनुरूप ऊंचाई लंबाई अच्छी होनी चाहिए।

चौगरखा बकरियों का गर्भकाल 5 माह का होता है। ये बकरियां प्रायः प्रथम ब्यात में एक बच्चा, दूसरे ब्यात में दो बच्चे देती हैं तथा कुछ बकरियां 3 बच्चे भी दे देती हैं। एक बकरा 20 से 25 बकरियों को गाभिन कराने के लिए पर्याप्त है। 25 से अधिक बकरियों को बकरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। वातावरण को ध्यान में रखते हुए बकरियों को अक्टूबर, नवम्बर एवं मई जून माह में गाभिन कराना चाहिए। पोषण की बात करेंगे तो बकरियों के नवजात बच्चों को पैदा होने के आधे घंटे के अंदर खीस पिलाएं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, भविष्य में वो कम बीमार पड़ते हैं तथा बच्चों को 15 दिन का होने पर हरा चारा, राती मिश्रण अथवा दाना खिलाना आरंभ करें तथा 3 माह का होने पर माँ का दूध पिलाना बंद कर दें। मांस उत्पादन के लिए नर बच्चों को 3 से 9 माह की उम्र तक शरीर भार का 2.5 से 3% तक समुचित मात्रा में ऊर्जा के लिए मक्का, मडुआ, जौ, गेहूं तथा प्रोटीन के लिए मूंगफली, अलसी, तिल, बिनौले की खल युक्त दाना देवें। इस रातिम मिश्रण अथवा दाना को ऊर्जा की मात्रा देने के लिए लगभग 60% एवं प्रोटीन युक्त अवकों को की मात्रा लगभग 37% तथा खनिज लवण मिश्रण 2% एवं नमक 1% होना चाहिए। बकरियों के बाड़े के आसपास चराई के लिए चारा वृक्ष जैसे बेर, कुराल, सैतूत, बांज, उतीस लगाए जा सकते हैं। दूध देने वाली गर्भवती बकरियों को आखिरी के 2 से 3 माह तथा बच्चों को 3 से 9 माह की उम्र में 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन रातिब दाना अथवा पिंडा, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भाषा में बोला जाता है, दिया जा सकता है। हरे चारे के साथ सूखा चारा अवश्य दें। कभी भी अचानक आहार व्यवस्था में बदलाव न करें एवं अधिक मात्रा में हरा एवं गीला चारा न दें। फलीदार चारे के साथ हमेशा सूखा चारा अथवा भूसा अवश्य दें। यदि बकरियां चराई पर निर्भर हैं तो 6 से 8 घंटे तक अवश्य चराएं। आवास प्रबंधन की बात करेंगे तो एक वयस्क बकरी को 2 से 3 वर्ग मीटर तक खुला तथा 1 से 1.5 वर्ग मीटर तक ढके क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। पशु गृह में पर्याप्त मात्रा में धूप, हवा, खुली जगह होनी चाहिए। सर्दियों में ठंड से एवं बरसातों में बौछार से बचाने के लिए खिड़कियों पर पर्दों की व्यवस्था करनी चाहिए। बकरी बारा हमेशा साफ व सूखा रखें। छोटे बच्चों को सीधे मिट्टी के संपर्क में आने से बचाने के लिए फर्श पर सूखी घास या पुआल बिछा दें तथा तीसरे दिन पर बदलते रहें। शरद ऋतु में यदि संभव हो तो लकड़ी के तख्ते फर्श पर बिछाकर अथवा 1 फुट ऊंची लकड़ी की मेजों की व्यवस्था करें ताकि बकरियां उस पर चढ़कर बैठ सकें और फर्श से आने वाली ठंड से बचाव हो सके। वर्षा ऋतु से पूर्व बाद में फर्श के ऊपरी सतह की 6 इंच मिट्टी बदल देनी चाहिए ताकि बकरियों में बीमारियों से बचाव किया जा सके। समय समय पर बाड़े में चूना, फिनाइल इत्यादि का प्रयोग करते रहें। छोटे बच्चे, गर्भित बकरियों एवं प्रजनक बकरों को अलग अलग कमरों में रखें। ब्यात के बाद बकरी तथा उसके बच्चों को 1 सप्ताह तक साथ रखें। स्वास्थ्य प्रबंधन के संबंध में बताना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु से पहले व बाद में साल में 2 बार कृमिनाशक दवाएं अवश्य पिलाएं। रोग प्रतिरोधक टीके मुख्यतः PPR, ET, पॉक्स, खुरपका, मुंहपका जिसे खुरिया भी कहा जाता है इत्यादि को समय से लगवाते रहें। बीमार पशुओं की छटनी कर स्वस्थ पशुओं से अलग रखें तथा तुरंत उपचार करवाएं। आवश्यकता अनुसार बाह्य परजीवी के उपचार के लिए ब्यूटोक्स 0.1% अर्थात 1 मिलीलीटर दवाई को 1 लीटर पानी में घोलकर बकरियों को स्नान कराएं तथा स्नान कराने से पूर्व बकरियों को भरपेट आहार जरूर दें। वह स्नान के समय मुंह पर मुखेरा लगा दें ताकि वह खुद को चाट न सकें। विशेषकर छोटे बच्चों को समय समय पर मल परीक्षण के लिए ले जाया जा सकता है। सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत बच्चे के जन्म के तुरंत बाद साफ कपड़े से उसके बदन व नथुनों की सफाई करें। नवजात बच्चों की नाभि नाल को शरीर से 3 सेंटीमीटर नीचे बांधकर उसके लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे से काटकर टिंचर आयोडीन लगाते रहें, जिसे 2 या 3 दिन तक लगातार लगा सकते हैं। प्रत्येक बकरी की पहचान के लिए टैगिंग अथवा फुल्ली लगवा लें, जिससे उसकी वंशावली, खान पान आदि की सटीक जानकारी मिलती रहेगी तथा कभी भी बकरी की मृत्यु होने पर बकरी पालकों को मुआवजा भी मिल सकता है। बकरियों को साफ पानी पूरे दिन अवश्य पिलाएं। जिन बकरियों का दूध कम हो उनके बच्चों को आसपास ब्याही बकरियों का दूध पिलाएं। बकरियों के खुर यदि बढ़ जाते हैं तो उसको समय समय पर काटते रहें। यदि संभव हो सके तो प्रतिमाह बच्चों के शरीर भार को तोलते रहें, जिससे उनकी बढ़वार व स्वास्थ्य का

0: पता चलते रहे।
1: टीकाकरण की विधियां, खुरपका का प्रथम टीका 3 माह की आयु में लगवाना चाहिए तथा बूस्टर टीका प्राथमिक टीकाकरण के 3 से 4 सप्ताह पश्चात लगवाना चाहिए तथा पुनः टीकाकरण 6 माह की उम्र में प्रतिवर्ष कराना चाहिए। बकरी प्लेग का प्रथम टीका 3 माह की आयु में लगवाना चाहिए तथा पुनः टीकाकरण 3 वर्ष पश्चात कराना चाहिए। आंत्र विषाक्तता या एंट्रोटॉक्सीमिया का प्रथम टीका 3 माह की आयु में लगवाना चाहिए तथा बूस्टर टीका प्रथम टीकाकरण के 3 से 4 माह पश्चात लगवाना चाहिए तथा पुनः टीकाकरण 6 माह की उम्र में प्रतिवर्ष कराना चाहिए। गलघोटू हिमोरोजिक सेप्टिसीमिया का प्रथम टीका 3 माह की आयु में लगवाना चाहिए तथा बूस्टर टीका प्राथमिक टीकाकरण के 3 से 4 सप्ताह पश्चात लगवाना चाहिए तथा पुनः टीकाकरण 6 माह के उपरांत प्रतिवर्ष कराना चाहिए। सामूहिक रोग नियंत्रण की बात करेंगे तो कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त रोग के नियंत्रण हेतु एम्प्रोलियम 50 से 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बकरी के शारीरिक भार के अनुसार 5 दिनों तक दिया जाएगा। अंतः परजीवी के लिए 3 माह की आयु में वर्षा ऋतु के प्रारंभ एवं अंत में सभी पशुओं को एक साथ दवा पिलानी चाहिए। फेनबेंडाजोल 7.5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के हिसाब से दिया जा सकता है। बाह्य परजीवी के लिए समस्त आयु वर्गों में शरद ऋतु के प्रारंभ एवं अंत में सभी पशुओं को एक साथ नहलाना चाहिए। डिपिंग अथवा स्नान के मौसम का विशेष ध्यान रखें। वर्षा के दिनों को छोड़कर इन्हें सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के समय पर स्नान कराना चाहिए। अतः चौगरखा बकरी के पालन के लिए उक्त विधियां अपनाकर किसान भाई बहन अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।
2: पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बकरी चौगरखा, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर उमा नौलिया से ये जानकारी श्रोता अभी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात स्पोर्ट्स स्कैन दिल्ली केंद्र से रिले होगा और रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, संध्या 7:30 पर ये दोनों ही प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा राजन राम के गाए कुमाऊनी लोकगीत। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात होगी अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजना विषय पर। व्यक्ति विशेष में जानिएगा चितरंजन दास के बारे में और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आज की बात के तहत आप सुनेंगे जानकारी। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होता है जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस, देशबंधु चितरंजन दास की जयंती, योग और ध्यान से मानसिक और भावनात्मकता से कैसे स्वस्थ रहें। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत सुनिएगा जिसमें आज कलाकार होंगे हरिओम शरण, लखबीर सिंह लखा। शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बातें होंगी नीमटोड प्रबंधन क्यों जरूरी विषय पर। खेती बचाओ अभियान सतत कृषि प्रणाली के अंतर्गत फसल चक्र के लाभ, इस विषय पर क्षेत्र संकलित जानकारी आप प्राप्त करेंगे। चर्चा सुनेंगे पशुओं के लिए संतुलित आहार का महत्व विषय पर और साथ ही सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मशरूम पोषण और मूल्य संवर्धन की नई दिशा, इस विषय पर डॉक्टर स्वाति गर्ब्याल से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। आपसे भेंट करेंगे कृष्ण सिंह लटवाल। फिल्म संगीत शाम 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत आप सुनेंगे सबरस में रात्रि 8 बजे और आज रात 9 बजकर

31 मिनट पर श्रोता गजलों का साप्ताहिक फरमाइशी प्रोग्राम सुनेंगे महफिल। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्म गीत। आप सुनेंगे 3 बजे, अभी आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। और आज के फनकार हैं जाने माने सुप्रसिद्ध अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता और उद्यमी मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें हम मिथुन दादा के नाम से भी जानते हैं। और आज 16 जून उनका जन्मदिन है, तो मिथुन दा को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मृग्या से साल 1976 में की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला उनके करियर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। साल 1980 के दशक में वो उस दौर में अपने सुनहरे दौर की अगर हम बात करें तो वो एक डांसिंग स्टार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और एक फिल्म आई डिस्को डांसर, इस फिल्म के ज़रिए वो पूरे देश विदेश में छा गए। और इस फिल्म के बाद वो दर्शकों के बीच बेहद पसंद किए जाने लगे। और ये गाना आई एम अ डिस्को डांसर, डिस्को डांसर फिल्म से आज भी सुनते हैं तो याद आते हैं मिथुन दा के वो दौर जब वो एक डांसिंग स्टार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आइए सुनते हैं वही गाना।

तो श्रोताओ, मृगया फिल्म के बाद यूं तो मिथुन दादा को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि उनका जो चेहरा था वो पारंपरिक हीरो जैसा नहीं था। बी सुभाष की फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें वो हैसियत दिलाई जो एक फिल्मी सितारे की तरह चमकता रहा। एक्शन और नाच गाने की श्रेणी की फिल्मों में वो सिरमौर बन गए और केसी बुकाड़िया की फिल्म प्यार झुकता नहीं की विराट सफलता ने उन्हें और भी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। और मिथुन चक्रवर्ती ने मृगया से लेकर ओएमजी तक हर फिल्म में अपनी एक छाप छोड़ी। यही वो समय था जब अमिताभ बच्चन की तूती बोल रही थी और युवाओं का एक वर्ग उनका दीवाना हुआ जा रहा था। ऐसे समय में मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी दीवानों की एक अलग जमात खड़ी कर दी। प्यार झुकता नहीं से लेकर डिस्को डांसर तक उन्होंने अपने स्टाइल की एक ऐसी पहचान बनाई जिसने हर बड़े शहर की छोटी बस्तियों में और छोटे शहर की हर बस्ती में अपनी एक खास छाप छोड़ी। ये उनकी सफलता ही थी कि हर साधारण सा दिखने वाला युवक उनकी तरह बाल कटवाकर, उनकी तरह कपड़े पहनकर और उनकी तरह थोड़ा सा अकड़कर चलते हुए अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझने लगा। इस तरह वो दर्शकों के बीच बेहद चर्चित हुए।

श्रोताओं, बॉलीवुड की लगभग 350 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया मिथुन चक्रवर्ती ने। उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया और वो एक ग्रुप, मोनार्क ग्रुप के मालिक भी हैं जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं। और पुरस्कारों की बात करें तो पद्म भूषण, 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। और उनकी चर्चित फिल्मों की यूँ तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ फिल्मों के नाम बता दें, मृग्या, डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं, जल्लाद, अग्निपथ, स्वामी विवेकानंद, दलाल, गुरु, OMG जैसी कई चर्चित फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपनी बेहतरीन अदायगी का जलवा बिखेरा।

श्रोता अभी सुन रहे थे एक ही फनकार, और आज के फनकार थे जाने माने मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। अपराह्न के बजे हैं 3 और लेकर हम आए हैं सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, एक बार जाने माने शायर कैफी आजमी ने कहा, गुल सा जाता है सुरूर फिजा में, गुल सा जाता है सुरूर फिजा में, तेरी आवाज को सुनूं या तेरी मौसीकी को सराहूं। सच में आवाज की जादू की बात करें या उनके मधुर महान संगीत की बात करें, दोनों ही अपने आप में बेमिसाल और कमाल के रहे। ये शब्द कहे कैफी आजमी साहब ने हेमंत कुमार मुखोपाध्याय, जिन्हें हम हेमंत दा के नाम से जानते हैं। आज 16 जून उनकी जन्म जयंती है, तो उन्हें श्रद्धा नमन करते हुए आज सदाबहार फिल्मी गीत उन्हीं के एक से पढ़कर एक खूबसूरत गीतों को समर्पित है, उनकी आवाज और उनके संगीत के साथ।

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के मित्रा इंस्टीट्यूट से पूरी की। अपनी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हेमंत कुमार ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की में उन्होंने दाखिला लिया और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेमंत कुमार ने बीच में ही छोड़ दी। कारण ये था कि उनका रुझान संगीत की ओर था और वो

संगीत बनने के लिए, संगीतकार बनने के लिए लालायित हो उठे थे। इसी बीच हेमंत कुमार ने साहित्य जगत में भी अपनी अच्छी खासी पहचान बनानी चाही और एक बांग्ला पत्रिका देश में उनकी एक कहानी प्रकाशित भी हुई, किंतु 1930 के अंत तक हेमंत कुमार ने अपना पूरा ध्यान संगीत की ओर लगाना शुरू कर दिया। अपने बचपन के मित्र सुभाष की सहायता से उन्होंने साल 1930 में आकाशवाणी के लिए अपना पहला बांग्ला गीत गाने का उन्हें अवसर मिला।

श्रोताओं, अपनी कमाल की गायकी से हेमंता ने ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि बरसों बाद भी हम उनकी आवाज़ की बात करें या फिर उनके संगीत की, दोनों ही अपने आप में बेमिसाल कमाल के रहे। साल 1941 में निमाई संन्यास बांग्ला फिल्म से उन्होंने शुरुआत की। 1944 में हिंदी फिल्म इरादा के लिए उन्होंने अपनी बेशकीमती आवाज़ दी, जिसे संगीत दिया था पंडित अमरनाथ ने। साल 1952 में संगीतकार के तौर पर हेमंता को पहचान दिलाने वाली फिल्म आनंद मठ थी। लता मंगेशकर के साथ उनका गाया वंदे मातरम से उन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली और ये गाना आज भी हम सुने तो वंदे मातरम रग रग में जोश और देशभक्ति की भावना से हमें ओतप्रोत करता है।

श्रोताओं, रविंद्र संगीत से प्रभावित हेमंदा को जिस फिल्म से नाम और बेहद शोहरत मिली वो फिल्म थी नागिन, जो कि साल 1954 में प्रदर्शित हुई। नागिन फिल्म का एक गाना मन डोले मेरा तन डोले, जो कि बेहद प्रसिद्ध गाना है, जिसे लता मंगेशकर जी ने अपनी मखमली आवाज़ दी और इसे संगीत से संवारा हेमंता ने। कहते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। फिल्म का गाना जबकि बेहद ज़बरदस्त था और वो दौर रिकॉर्ड्स का था। फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी ने करीब 1000 रिकॉर्ड्स होटल्स और रेस्टोरेंट्स में फ्री में बंटवा दिए। वहाँ पहुँचने वाले लोगों को गाना इतना पसंद आया कि दर्शक नागिन देखने के लिए सिनेमा घर पहुँचने लगे और इस तरह ये फिल्म सुपर हिट हो गई। कहते हैं इस गाने की प्रसिद्धि ने हेमंत दा का करियर भी सवार दिया।

श्रोतो, जाने माने संगीत निर्देशक, संगीतकार सचिन देव बर्मन के लिए लगभग 13 गाने हेमंत कुमार ने गाए थे, जिनमें 12 गाने देव आनंद पर फिल्माए गए। और एक तरह से ये जो गाने थे देवानंद पर जो फिल्माए गए, वो हेमंत कुमार की आवाज़ देवानंद की आवाज़ बन गई। और याद कीजिए, साल 1958 में आई फिल्म सोलवा सावन, इस फिल्म के लिए देवानंद पर जो फिल्माया गया गाना है अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही ख़ास गाना है। आइए सुनते हैं।

एक पार्श्व गायक और संगीतकार के रूप में तो स्थापित हो चुके थे हेमंत दा। 50 के दशक में हेमंत कुमार ने बांग्ला और हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशन के साथ साथ गाने तो गाए ही, साथ ही साल 1949 में हेमंत कुमार ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। हेमंता बेला प्रोडक्शन के नाम से फिल्म कंपनी की उन्होंने स्थापना की। इस बैनर के तले मृणाल सेन के निर्देशन में एक बांग्ला फिल्म नील आकाशेर नीचे का निर्माण किया। इस फिल्म को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद हेमंत दा ने अपने बैनर तले 20 साल बाद कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर, खामोशी जैसी कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। 70 के दशक में हेमंत कुमार ने हिंदी फिल्मों के लिए काम करना कुछ कम कर दिया, हालांकि बांग्ला फिल्मों के लिए वो काम करते रहे। साल 1971 में हेमंत दा ने एक बांग्ला फिल्म आनंदिता का निर्देशन भी किया, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा चली नहीं।

श्रोतो, हेमंदा ने हिंदी बांग्ला के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी गीत लिखा, संगीत दिया। गुजराती, मराठी, असमी, पंजाबी, तमिल, संस्कृत, कोंकणी, उर्दू और भोजपुरी भाषाओं के उन्होंने गाने गाए।

गुलजार साहब की कलम ने जो भावपूर्ण गीतों की रचना की, उन गीतों को हेमंत कुमार जी ने अपनी बेहतरीन संगीत और अपनी आवाज़ से बहुत ही अलग तरह का गीत बना दिए। गुलजार साहब ने एक बार कहा था कि हेमंत दा के आदर्श गीत, खामोशी फिल्म की बात करें तो वो उतनी ही पवित्र धुन की आवश्यकता थी जैसे कि हेमंत दा ने वो रचकर एक मिसाल कायम की। रविंद्र संगीत के उस्ताद हेमंत दा रविंद्र टैगोर जी के रविंद्र संगीत के जाने माने कलाकार माने जाते हैं। देवव्रत, विश्वास, सागर सेन और कनिका बनर्जी के साथ हेमंत दा ने संगीत की दुनिया में, यानी रविंद्र संगीत की दुनिया में भी

श्रुतो, हेमंदा एक ऐसे संगीत के पुजारी थे जिनके लिए मशहूर संगीतकार सलिल चौधरी कहा करते थे कि अगर ईश्वर गाना गाते तो उनकी आवाज हेमंत कुमार की तरह होती। वहीं लता मंगेशकर भी उनकी गायकी की मुरीद थीं। कहा करती थीं कि जब हेमंदा गाते हैं तो ऐसा लगता है कोई पुजारी मंदिर में बैठकर गा रहा हो।

याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, जाग दर्द इश्क जाग, मंडोले मेरा तंडोले, नैन से नैन मिले, जाने वो कैसे लोग थे, है अपना दिल तो आवारा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, न जाओ सैयां छुड़ा के भैया, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, जैसे कई अनगिनत गानों को संगीत दिया और पार्श्व गायन किया हेमंदा ने। और आज भले ही हेमंत कुमार मुखोपाध्याय सुर संगीत के पुजारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे संगीत की ऐसी शानदार विरासत छोड़ गए हैं जिसकी ताजगी सदियों तक बनी रहेगी। 26 सितंबर 1989 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा नमन करते हैं।

सदाबहार फिल्म गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी सायंकालीन सभा के सभी प्रसारण मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी बागेश्वर के FM 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी रिले किए जा रहे हैं। संध्या के ठीक 5 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियन शहर पहुंच गए हैं। इवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेन देन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राजन राम का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

राजन राम के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले एक नज़र

आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और रात्रि 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ देर पश्चात शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ईएफ वाणी। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे संध्या 6:41 पर और किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे संध्या 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत। मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सफरस होगा रात्रि 8:00 और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गजलों का प्रोग्राम महफिल और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:55 पर। 6:05 पर विचार बिंदु और उसके पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आज की बात। ये कार्यक्रम होगा प्रातः 6:40 पर और विविधा कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:50 पर। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे प्रातः 7:10 पर और कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे कमलेश कुमार। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे प्रातः 8:30 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जर आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे सबरंग कार्यक्रम में प्रातः 10:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार आप सुनेंगे प्रातः 10:35 पर। कल प्रातः 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कुमाऊनी व गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर आप सुनेंगे प्रातः 11:30 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद होगा दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:05 पर हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। सुगम संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:00 और किसान भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम खेती की बातें होगा दोपहर 2:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार आप सुनेंगे दोपहर 2:45 पर और सभा के अंत में अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

हमारी सायंकालीन सफ़ार रोजाना की तरह आरंभ होती है। संध्या 5 बजे, संध्या 5:05 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम विशाल स्वर। कल संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ये पवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा हुनर को बनाए रोजगार। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे संध्या 6:41 पर और ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्राम देवता सुनेंगे संध्या 7 बजे। कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे संध्या 7:30 पर और फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर। लोकगाथा क्रम में लोकगाथा भनारी नैत का दूसरा भाग आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर और सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 5:15 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम यह बवाणी।

0: युववाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी रेडियो मित्र राशिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी के आज के अंक में। दोस्तों आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं पर। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सभी स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटी के योग्य छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान करता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का उद्देश्य इन योजनाओं द्वारा एजुकेशनल लागतों का समर्थन करना है व छात्रों को फाइनेंशियल परेशानियों से राहत देना है। अल्पसंख्यक समुदाय के कई छात्रों के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। इनमें से कुछ योजनाएं हैं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना, अल्पसंख्यकों के लिए सीखो एवं कमाओ योजना। इन योजनाओं में से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य है प्री मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति देकर अल्पसंख्यक समुदायों के माता पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को कम करना और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना। ये योजना उनके शैक्षिक प्राप्ति के लिए आधार तय करेगी और प्रतिस्पर्धी रोजगार क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करेगी। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान किए जा सके, उच्च शिक्षा में उनकी उपलब्धि दर में वृद्धि हो और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो। दोस्तों वहीं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य है छात्रवृत्ति द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों में आगे बढ़ सके। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौलाना आज़ाद अध्येतावृत्ति योजना की, जिसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एमफिल और पीएचडी स्तर की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देना। इस योजना के तहत छात्रों को 5 साल की फेलोशिप दी जाती है। अब आखिर में आती है सीखो और कमाओ योजना, जिसका लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी योग्यता, प्रचलित आर्थिक रुझानों और बाजार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक एवं पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है, जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार अपना सके।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। दोस्तों आज के समय में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि कौशल यानी स्किल्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत संचालित होती है और इसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC लागू करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, रोजगार योग्य बनाना, उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देना, स्वरोजगार व और उद्यमिता को बढ़ावा देना, प्रमाण पत्र प्रदान करना ताकि युवाओं को नौकरी पाने में सहायता मिले। इस योजना के तहत अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि IT क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, रिटेल के क्षेत्र में, सौंदर्य एवं वेलनेस के क्षेत्र में, दोस्तों पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने कौशल विकास में डिजिटल शिक्षा, उद्यमिता और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आदि। इच्छुक उम्मीदवार सरकार द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए स्किल इंडिया डिजिटल पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में केवल नौकरी खोजना ही नहीं बल्कि अपने कौशल को विकसित करना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, कौशल ही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों ये थी हमारी आज की बात। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

0: तो सब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं योग की, जो ना ही हमें हेल्दी बॉडी देता है बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। इसे विषय में अधिक जानकारी देने के लिए सुनते हैं कोमल पांडे को, जो कि एक योग शिक्षिका है।
1: नमस्कार युवा साथियों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन। मेरा नाम कोमल कांडपाल है और मैं एक योग शिक्षिका हूँ। आज मैं आप सभी से योग के महत्व के बारे में बात करने आई हूँ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूल जाते हैं। इसी कारण तनाव, चिंता, थकान और शारीरिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में योग हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। योग हमें शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से संतुलित बनाता है। नियमित योग करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है, मन एकाग्र होता है और तनाव कम होता है, और ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। युवाओं के लिए योग विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने, आत्मविश्वास विकसित करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में सहायता करता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग को दें, तो हम अपने जीवन को अधिक स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सरल और उपयोगी योगासन के बारे में बताऊंगी, जिन्हें आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे पंजों के बल खड़े होने का प्रयास कीजिए। शरीर को ऊपर की ओर खींचिए और सामान्य रूप से श्वास लेते रहिए। इस आसन से शरीर का संतुलन बेहतर होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और शरीर की लंबाई एवं मुद्रा में सुधार आता है। दूसरा आसन है वृक्षासन। इस आसन में सीधे खड़े होकर एक पैर को दूसरे पैर की जगह पर रखें और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर ले जाएं। संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। वृक्षासन से एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति आती है और शरीर का संतुलन मजबूत होता है। तीसरा आसन है भुजंगासन। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों की सहायता से शरीर के ऊपरी भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। भुजंगासन से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पेट दर्द में राहत मिलती है तथा शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। चौथा आसन है वज्रासन। भोजन के बाद घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं और रीढ़ को सीधा रखें। यह आसन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, मन को शांत करता है और ध्यान लगाने में सहायता करता है। प्रिय साथियों, योग हमें केवल स्वस्थ शरीर ही नहीं देता, बल्कि एक शांत और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। यदि हम प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट भी योग करें, तो वह अपने जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और एक स्वस्थ, संतुलित एवं खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कोमल कांडपाल के विचार योग के विषय पर। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बढ़ते हैं आज के विशेष अंक व्यक्ति विशेष के, और आज हम व्यक्ति विशेष में बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध वकील, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास की, जिन्हें पूरे देश में देशबंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1876 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता भुवन मोहन दास एक प्रसिद्ध वकील और पत्रकार थे। चित्तरंजन दास ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वे एक सफल बैरिस्टर बने, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा और ज्ञान को केवल व्यक्तिगत

0: सफलता तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनको विशेष रूप से 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस में क्रांतिकारी नेता अरविंदो घोष का पक्ष रखने के लिए याद किया जाता है। उनके प्रभावशाली पैरवी के कारण अरविंद घोष को बरी कर दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। उन्होंने अपनी समृद्ध वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन को में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। सन 1923 में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की नीतियों का विधान परिषदों के भीतर रहकर विरोध करना और स्वशासन की मांग को मजबूत करना था। इस कार्य में उनके सहयोगी थे मोतीलाल नेहरू। उनकी लोकप्रियता और जनसेवा के कारण लोगों ने उन्हें देशबंधु अर्थात देश का मित्र की उपाधि दी। वे गरीब श्रमिकों और आम जनता के अधिकारों के समर्थक थे। तो दोस्तों, चलिए आज 16 जून को उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देती है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर और जानते हैं क्यों है आज का दिन खास इतिहास के पन्नों में। आज ही के दिन वर्ष 1963 में सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। करीब 71 घंटे अंतरिक्ष में रहने के दौरान वेलेंटिना ने 48 बार पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाए। 19 जून को वे धरती पर लौटी। 20,000 फीट की ऊंचाई से उन्होंने पैराशूट से जंप किया था। आज ही के दिन वर्ष 1911 में तीन कंपनियां, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, इंटरनेशनल टाइम रिकॉर्डिंग कंपनी और कंप्यूटिंग स्केल कंपनी ने एक साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई और उसको नाम दिया कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। यही कंपनी आगे चलकर IBM के नाम से जानी गई, जो आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। आज ही के दिन वर्ष 2010 में भूटान संसद ने एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक पूरे भूटान में तंबाकू की खेती करने, निश्चित सीमा से ज़्यादा तंबाकू इस्तेमाल करने और खरीदने और बेचने पर बैन है। कानून के मुताबिक ये गैर जमानती अपराध है। तंबाकू प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने वाला भूटान दुनिया का पहला देश बना। दोस्तों ये था हमारा आज का इतिहास। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा

सब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और बताते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर, साथ ही सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम। दोस्तों, हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, आकाशवाणी अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी, जिसका सही उत्तर है आकाशवाणी अल्मोड़ा की स्थापना 15 जून 1986 को हुई थी। और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम है काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, मायरा सुरेशे, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिया। दोस्तों, इसी क्रम में नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है चितरंजन दास का जन्म कब हुआ था। प्रश्न एक बार फिर, चितरंजन

रंजन दास का जन्म कब हुआ था? अगर जानते हैं आप इसका सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। सही उत्तर लिख भेजने वाले दोस्तों के नाम कल इसी कार्यक्रम में उद्घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त राशिका को अनुमति दीजिए आज के युवाणी कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुननी सभी श्रोता लोगन के नारायण दत्त पाठक एक नमस्कार। श्रोताओं, यह दुनिया बहुत ही सुंदर है। प्रकृति लिए गए अपन रंगन में रंगी हुई है। हर मन की अपन एक अलग दुनिया हूँ, लेकिन जब एक देश नागरिकन के वो देश में रोजगार पर्याप्त रूप में नहीं मिलन तो वो रोजगार रख लीजिए दूसरा देश जाते रहनी। देशन में ओण जाने की प्रक्रिया लोग अपन परिवार पालना के लिए करनी। तो जब कोयले श्रमिक एक देश बटी दूसरा श्रमिक दूसरा देश में रोनी हो श्रमिक बन बे और वहाँ बटी डबल कमा बे अपन देश में भेजनी, तो वो देश है कि जो आर्थिक स्थिति से उले मजबूत हों उन्हें पारिवारिक स्थिति में मजबूत हों। पारिवारिक यो बेहतरी में जो प्रवासी श्रमिक छन उनर भूमिका के रेखांकित करना लीजिए हर साल 16 तारीख जून के अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाई जा। यो दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रवासी श्रमिकों को योगदानों के सम्मानित करना लीजिए मनाई जा जो प्रेषणक माध्यम अपन परिवारों का समर्थन करनी। विश्व भर में 200 मिलियन है ज़्यादा प्रवासी श्रमिक अपन परिवारन के धन भेजनी। वैश्विक स्तर पर देखी जाओ तो प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई कुल प्रेषण $830 बिलियन है ज़्यादा छ। औसत प्रेषण राशि लगभग $200-300 बिलियन मानी जाए। यह धनराशि परिवारों के भोजन आवास स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे बुनियादी आवश्यकताओं के पूर्ण में सहायता करें। वैश्विक प्रेषणक लगभग एक तिहाई हिस्से ग्रामीण क्षेत्रों तक पूजन। युद्ध दिवस के मनोने की शुरुआत सन 2008 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा करी गई थी और बाद में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाई गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त युद्ध दिन मनोने की सार्थकता तब है जब हम उन लोगनक द्वारा करी गई सहायता के रेखांकित करनों उनके सम्मानित करनों कि उन्होंने हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति से उसे मजबूत करना के लिए अपन तरफ बेटी विदेशी मुद्रा हमारे देश में भेज भेज योगदान कर रखो तो तब हम युद्ध दिन एक सार्थकता के सही मान सकनों। कार्यक्रम में हम अगिल के आप बातचीत करते रहूँ एल आपों के सुनना एक कुमावनी लोकगीत गायक कलाकार छन दर्शन सिंह परिहार।

0: श्रोताओ आप सुन लाग राचा दर्शन सिंह परिहाराक्षर में कुमाऊनी लोगी।
1: निशान वाला कोई सामान मत लाया करो,
2: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो, सारा सामान ISI का ही है।
1: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
2: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
1: झगड़ा मिटाएं,
2: विश्वास जगाएं।
0: श्रोताओं कार्यक्रम में आप हम आपको सुन लग रहे हैं एक गढ़वाल लोकगीत संबद्ध स्वर में।

0: श्रोता मूं सुणो मणिलाल जेरवाण और केशव अनुरागी गाई यो गढ़वाल लोकगीत। अब हम आपको सुन लग रहे हैं एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
1: श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं योग और ध्यान से मानसिक तनाव व भावुकता से कैसे स्वस्थ रहें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती भावना लोहानी जी। भावना जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग और ध्यान का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है।
2: योग और ध्यान हमारे मन मस्तिष्क और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करते हैं।
1: जी।
2: यदि हम नियमित रेगुलर अभ्यास करते हैं तो हमारा टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद में कमी आती है, मन शांत एकाग्र होता है और सकारात्मकता आती है। योग केवल शरीर को ही नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं को भी स्वस्थ बनाता है।
1: जी। एक आम आदमी को किस उम्र में योग और आसनों का अभ्यास शुरू करना चाहिए, और साथ ही साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि योग, प्राणायाम आदि ये किस समय करने चाहिए।
2: मैं कहना चाहूंगी कि योग और ध्यान की शुरुआत करने के लिए किसी विशेष आयु की आवश्यकता नहीं होती है।
1: जी।
2: ये बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, जैसे 3 वर्ष के बालक से लेकर जीवन पर्यंत कोई भी व्यक्ति इसे अपना सकता है। वास्तविकता तो ये है कि जब व्यक्ति स्वयं को तनावग्रस्त महसूस करे, असंतुलन देखे अपने अंदर
1: जी।
2: या अपनी व्यस्तता महसूस करे, तो तभी से योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए।
1: जी। तो आम दिनचर्या में योग और अभ्यास, ध्यान आदि किस समय करना चाहिए।
2: योग का समय के लिए मैं कहना चाहूंगी कि प्रातः काल का समय अनुकूल रहता है।
1: जी।
2: प्रातः हम लोग फ्रेश रहते हैं, प्रातः काल का समय बहुत अनुकूल रहता है।
1: जी।
2: और प्रकृति में उस समय वातावरण भी प्रदूषित नहीं रहता है, स्वच्छता रहती है, प्रदूषण की कमी रहती है, तो श्वास प्रश्वास के लिए ये समय बहुत बेहतर माना जाता है।
1: मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें कौन से योग आसन

0: आदि करनी चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं।
1: जी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर आसनों की बात की जाए तो ताड़ासन कर सकते हैं और वृक्षासन कर सकते हैं, जो हमें स्थिरता, मानसिक स्थिरता लगती है। शशांक आसन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, मकर आसन और शवासन अत्यंत लाभकारी है कि उससे हमें मानसिक स्वास्थ्य में, तनाव में शांति प्रदान करता है ये। और प्राणायाम की अगर बात करें तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है जो मानसिक शांति प्रदान करता है, और नाड़ी शोथन है जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह करने वाले जो स्रोत हैं उनको खोल करके अधिक मात्रा में जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, विशेष रूप से ये हमारे मन को शांत करते हैं और स्थिर बनाने में सहायक होते हैं।
0: ये तो बात आई योग की, और अगर हम बात करें योग के साथ ध्यान की, तो ध्यान का मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है?
1: ध्यान मन की चंचलता, बाहरी आडंबर को कम करके उसे वर्तमान क्षण में स्थिर करता है ध्यान। इससे हमारे आत्मविश्वास, हमारा धैर्य और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है ध्यान करने से।
0: जी,
1: योगासन और प्राणायाम के बाद शांत वातावरण में सुखासन या किसी भी आसन में जो सुखद हो
0: जी।
1: या पद्मासन में बैठ सकें तो और अच्छा होगा। पद्मासन में बैठकर श्वास पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। ये ध्यान की सरल प्रभावी विधि है जो हमारे वर्तमान क्षण को स्थिरता प्रदान करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
0: अच्छा, योग और ध्यान से मानसिक तनाव और भावुकता को नियंत्रित किया जा सकता है?
1: ये जरूर किया जा सकता है, निश्चित रूप से किया जा सकता है। योग और ध्यान भावनाओं को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें समझने के लिए है, उन्हें संतुलित करने के लिए है। और योग और ध्यान इसको, भावनाओं को समझने और संतुलित करने की कला सिखाते हैं हमें। नियमित रूप से अभ्यास करने से व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहता है, संयमित रहता है और सकारात्मक बना रहता है। इससे भावनात्मक संतुलन जो है हमारा, मानसिक दृढ़ता डेवलप होती है।
0: जी, अच्छा, आजकल की जो आपाधापी वाली जिंदगी है, भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें आम आदमी को स्वस्थ रहने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: वर्तमान परिस्थितियों में मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वस्थ जीवन के लिए योग और ध्यान को दवा के रूप में नहीं लेना है, बल्कि दैनिक जीवन की दिनचर्या में इसको शामिल करना है। प्रतिदिन केवल आधा घंटा भी अगर हम अभ्यास करें तो इससे हमारा तन भी और मन भी स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है। जीवन को ये योग और ध्यान हमारा संतुलन बनाए रखता है। योग जीवन जीने की कला है और ध्यान जो है स्वयं से जुड़ने का मार्ग है, और यही योग और ध्यान जो है स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार है।
0: भावना लोहानी जी, आपने योग और ध्यान के बारे में बहुत विस्तृत रूप से हमारे श्रोताओं को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आप सुन लागराच्या क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता, विषय ची योग और ध्यान से मानसिक तनाव और भावुकता से कैसे स्वस्थ रहें। हम दगे बातचीत करने लागरा ची योग प्रशिक्षिका श्रीमती भावना लोहानी। अब फिर मनोरंजन की तरफ हम जनू और आपों का सुनू एक कुमावनी लोकगीत शेर सिंह रावत और उनार दगड़ूनक स्वर में।

पश्चिम माजी तीरथ धाम बद्री केदार उत्तर काजी गया कसर चीर चौभागी।

दक्षिण में चूमाजी तीर्थ धाम बद्री केदार उत्तर काशी गाया यकोशर चीर चौभागी।

श्रोताओं आप सुन लग रहा है शेर सिंह रावत और उनार्दगढ़ नक्सर में कुमावनी लोकी। श्रोताओं इतिहास में आज अब दिन एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे देश महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश बंधु चित्तरंजन दास जी ने पुण्यतिथि मनवा लग रहा। देश बंधु चित्तरंजन दास जी का जन्म 5 नवंबर 1970 में कोलकाता में पहुंची। वो तत्कालीन ढाका जिले में तेलीर बागा के एक उच्च मध्यवर्गीय वैद्य परिवार बटी संबंध रखी। उनार बाबू भुवन मोहनदास कोलकाता उच्च न्यायालय में एक जानी मानी वकील थे।

चित्तरंजन दास जी स्वयं एक तीक्ष्ण बुद्धि और पत्रकारी दृष्टिकोण अगली जिले जानी जाए छी और कलकत्ता उच्च न्यायालय में विख्यात वकील छी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हर योगदान के देखते हुए और इन्हर व्यवहार के देखते हुए लोग बाग उपखतियनन के देश बंधु यानी देशक मित्र कह दे बोलो छी। यो महान राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध विधि शास्त्री छी। चित्तरंजन दास जी अलीपुर षड्यंत्र कांड जो कि 1908 ईस्वी में पहुंची वीक अभियुक्त अरविंद घोषाक बचावाक लीजिए बचाव पक्षाक वकील छी और उन्होंने असहयोग आंदोलनक अवसर पर अपन वकालत छोड़ दी और 1921 में वो अहमदाबाद में वहीं कांग्रेसक अधिवेशनक अध्यक्ष ले रही। स्वराज पार्टी के संस्थापक रहते हुए उन्होंने 1923 में लाहौर और 1924 में अहमदाबाद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अध्यक्षता ली करी। देश सेवा में निरंतर अपन जीवन के लगाते हुए 16 जून सन 1925 में एक लंबी बीमारी बाद इन्होंने यो नश्वर संसार के अलविदा कोची। इनर त्याग इनर तपस्या और इनर बलिदान का प्रसाद पर आज हम स्वतंत्र भारत में सांस लेने लग रही हैं, हम स्वतंत्रता आनंद लेने लग रही हैं। तो यूं लोग ना बताई बाट पर हिटन और इनर बलिदान के हमेशा याद धरण हम सब भारतीय इनर परम कर्तव्य छ। उनर पुण्यतिथि पर उनके याद करण हमारे लिए गौरव बात छ। कार्यक्रम में अगिल का बढ़ते और आपके सुनो एक गढ़वाल लोकगीत नरेंद्र सिंह नेगी स्वर्ण।

श्रोताओं, नरेंद्र सिंह नेगी गाई जो कुमावनी लोकगीत के बाद अब हम आपको सुन लग रहे हैं एक कुमावनी लोकगीत जैक गायक कलाकार कृष्ण मोहन सिंह बिष्ट और उनार दगड़ू।

श्रोताओ, कृष्ण मोहन सिंह बिष्ट और उनार दगड़ुनाक गाई यो कुमावनी लोकगीता का दगाड़ हमारा आज उत्तरायण कार्यक्रम आप संपन्न हो भो आप दगे फिर भेंट हुए तत्कार लीजिए। नारायण दत्त पाठक के आज्ञा दियो नमस्कार। उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार आपों सुनला थोड़ी देर में हमार देहरादून केंद्र बटी।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए

0: तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बने, परिश्रमी बने और साहसी बने। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग कर इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए अगस्त माह तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में राशन कार्ड सत्यापन अभियान जारी, 7,000 से अधिक अपात्र कार्ड निरस्त। और नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने आज प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गणना प्रपत्र वितरण कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही इस कार्य को पूरा करने वाले जिलों को डिजिटाइजेशन पर ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को स्वयं बूथवार समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घर पर अनुपस्थित मतदाताओं के सत्यापन के लिए बीएलओ और बीएलए संयुक्त रूप से जाएं और अनिवार्य रूप से 3 बार विजिट करें। डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि जिन बूथों पर वितरण और डिजिटाइजेशन की प्रगति धीमी है उन स्थानों पर अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाए। बैठक में उप निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में फॉर्म वितरण पूरा हो चुका है और मतदाता अनुपस्थित मिले हैं वहां डिजिटाइजेशन के बाद ऐसी सूचियाँ संबंधित बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा की जाएँ। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए अगस्त माह तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने खेल विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए भी जल्द से जल्द नियुक्तियाँ करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती आर्या ने नई खेल नीति बनाने और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित करने के काम को भी तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
2: आज जो है खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा की गई। इसी प्रकार से आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम हर हाल में आउट ऑफ टर्न जॉब जो है वो हम अगस्त से सितंबर माह तक हम इसको इसकी विज्ञप्ति जारी करें। इसी वर्ष जो है हम बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब भी देंगे। इसके साथ ही नई खेल नीति बननी है और नई खेल नीति में पुरानी खेल नीति में जो भी ड्रॉबैक्स रखे हैं उन ड्रॉबैक्स को पूर्ण करते हुए नई खेल नीति का भी हम जल्द से जल्द उसे कैबिनेट में हम टेबल निर्देश दिए हैं।
1: चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे धामों में कैमरे से यात्रियों की निगरानी करने के साथ ही उनकी समस्याओं के तुरंत समाधान और यात्रा संचालन की सतत निगरानी की जा रही है। उप निदेशक पर्यटन अमित लोहनी ने बताया कि अभी तक 45,000 से अधिक कॉल प्राप्त की जा चुकी हैं, साथ ही उनका निस्तारण भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि चार धाम

0: यात्रा में पंजीकरण करा चुके यात्रियों को व्हाट्सएप से मौसम का अपडेट भी दिया जा रहा है।
1: इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपने पंजीकरण, हेली सेवाएं, रहने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके। अभी तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से, और उनका सफल निस्तारण किया जाता है। और इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं, इनको हम अन्य विभागों के साथ, जैसे पुलिस, हेल्थ, आपदा, इनके साथ भी इनको हम साझा करते हैं, और उनकी मदद से उनको उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है, उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है, ये सभी विभागों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं, इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए

0: किया जाता है और इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं इनको हम अन्य विभागों के साथ जैसे पुलिस, हेल्थ, आपदा, इनके साथ भी इनको हम साझा करते हैं और उनकी मदद से उनको उनके उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है ये सभी विभागों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पौड़ी जिले में राशन कार्डों का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। इसके तहत अपात्र, मृतक, स्थानांतरित और अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों की पहचान कर अब तक 7,799 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं, जिनसे संबंधित 31,268 यूनिट भी समाप्त कर दी गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि पिछले साल सितंबर माह से राशन कार्ड सत्यापन अभियान के तहत अपात्र, मृतक और अन्य अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। वहीं पात्र और ज़रूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए नए राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सितंबर माह से अब तक 3,347 नए राशन कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। चंपावत जिले के विभिन्न निकायों में स्वनिधि महोत्सव के तहत लोक कल्याण मेले और शिविरों का आयोजन कर केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आज जिला मुख्यालय के नगर पालिका में लोक कल्याण मेले का आयोजन कर रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि रेहड़ी पटरी वालों के परिवारों को भी सरकार द्वारा 5 विभागों की 8 योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है।
2: एक बहुत ही लोकप्रिय जो हमारी योजना है PM स्वनिधि, जिसके अंतर्गत जो रेहड़ी पटरी व्यवसायी हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए लोन देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और इस योजना के साथ साथ ही हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके सभी परिजनों को 5 विभागों की 8 योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है, जिसको PM स्वनिधि समृद्धि स्कीम हम कहते हैं। तो इन दोनों ही जो हमारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके अंतर्गत आज नगर पालिका परिषद चंपावत के सभागार में 2 दिवसीय कैंप का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय और है कि जो भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक क्रेडिट कार्ड की स्कीम लॉन्च की गई है PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत, उसका वितरण भी हम लोग यहाँ बैंक में भी हमारे बीच में उपस्थित हैं उनके माध्यम से कराना सुनिश्चित कराएंगे।
1: हरिद्वार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान को गति देने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने आज कैंप कार्यालय से स्वीप वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत संचालित यह वाहन जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम जन को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची संशोधन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. BVRC पुरुषोत्तम और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए अगस्त माह तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में राशन कार्ड सत्यापन अभियान जारी।

0: 7000 से अधिक अपात्र कार्ड निरस्त। और नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 14.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

हरि ओम शरण के स्वर में अभी आपने भक्ति वंदन सुना। भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा केंद्र से। आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं लखबीर सिंह लखा का गाया ये भक्ति गीत।

संपन्न होता है। एफएम 14.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने को है। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार गढ़वाली में हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे।

0: आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वली प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी आशना कंडियाल नेगी पहली मुख्य समाचार। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोली सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को शीघ्र समाधान करे जालू। चारधाम यात्रा थे सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनाण खुण उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाणो छ। सोमवती अमावस्या स्नान का बाद हरिद्वार में रात भर चली सफाई अभियान 90 ट्रैक्टर कूड़ा एकत्रित करवे को निस्तारण करे जालू। और चंपावत जिला में मां पूर्णागिरी मेला संपन्न ये वर्ष 25 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करे। अब समाचार विस्तार से। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोली कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता से जुड़िया मुद्दों थे शीघ्र समाधान करे जालू। यहां खुणे विभागीय अधिकारियों थे शिक्षक संगठनों से वार्ता कर व्यवहारिक और सुसंगत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिया गया छ। ये संबंध में देहरादून में आयोजित बैठक में डॉक्टर रावतन बोली कि राज्य में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाला करीब 20,000 शिक्षकों की ये वर्ष महत्वपूर्ण समस्या से जुड़े सभी पहलुओं थे गंभीरता से अध्ययन करे जालू। उन अधिकारियों थे अन्य राज्यों में TET अनिवार्यता थे लेकर अपनाया गया मॉडलों पर और लिया गया निर्णयों को विस्तृत अध्ययन पर रिपोर्ट प्रस्तुतकरण को बोली। बैठक में शिक्षकों की उन पदोन्नति से जुड़िया मामलों पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने उच्च न्यायालय से लंबित पदोन्नति संबंधित मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने का निर्देश दें ताकि शिक्षकों थे जल्द प्रमोशन का लाभ मिल सकुन। चारधाम यात्रा थे सुरक्षित सुगम और सुव्यवस्थित बनाण खुण उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाणो छ। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये कंट्रोल रूम में 24 घंटा धामों में कैमरा से यात्रियों की निगरानी करण का दगड़ उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान और यात्रा संचालन की सतत निगरानी की जाने छ। उप निदेशक पर्यटन अमित लोहनिन बताए कि अभी तक 45,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुए चुकिन दगड़ाहियों का निस्तारण भी करे जा चुकिन। उन बताए कि चारधाम यात्रा में पंजीकरण कर चुकिन यात्रियों थे व्हाट्सएप से मौसम का अपडेट भी दिए जाना छ।
1: इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अपने पंजीकरण हेली सेवाएं रहने की व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके। अभी तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से और उनका सफल निस्तारण किया जाता है। और इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं इनको हम अन्य विभागों के साथ जैसे पुलिस हेल्थ आपदा इनके साथ भी इनको हम साझा करते हैं और उनकी मदद से उनको उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है ये सभी विभागों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके।
0: हरिद्वार जिला में मतदाता जागरूकता अभियान थे गति देने का उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित आज कैंप कार्यालय बटे स्वीप वाहन थे हरी झंडी दिखाकर रवाना करी। ये अवसर पर उन बोली कि लोकतंत्र की मजबूती खुण प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नौ दर्ज होण और मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अवश्य छ। स्वीप कार्यक्रम का तहत संचालित युवाहन जिला का सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आमजन थे मतदाता पंजीकरण मतदाता सूची संशोधन विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और मतदान का महत्व के प्रति जागरूक करलो। वही उत्तरकाशी जिला में स्वीप कार्यक्रम का तहत आज जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोशियाड़ा में मतदाता जागरूकता शिविर लगाए गए। ये दौरान युवाओं थे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण गणना प्रपत्र भरण की प्रक्रिया और मतदाता सूची में नौ बने रखने की महत्व की जानकारी दिए गए।
2: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तरा

0: उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन। भोल सोमवती अमावस्या का अवसर पर हरिद्वार में आयोजित स्नान पर्व में 76 लाख से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाई। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन का कारण विभिन्न गंगा घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्रित हुए, जैसे नगर निगम की टीम ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर साफ करी। नगर निगमन रात भर लगातार कार्य करता वे लगभग 90 ट्रैक्टर कूड़ा एकत्रित कर वे को निस्तारण करी। आज सुबह 4 बजे तक सभी प्रमुख घाटों और आसपास का क्षेत्रों से कूड़ा हटाकर व्यापक सफाई कार्य पूरा करेंगे। नगर निगम का अधिकारियों का अनुसार श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व संख्या का बावजूद निर्धारित समय पर सभी प्रमुख घाटों और मार्गों की सफाई पूरी करेंगे, जो नगर निगम की सुव्यवस्थित कार्य योजना और कर्मचारियों की अथक मेहनत को परिणाम छ। चंपावत जिला में लगभग 3.5 महीना बटे चलणु माँ पूर्णागिरी मेला संपन्न वेगे। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि ये वर्ष मेला में 25 लाख से अधिक श्रद्धालु माता का दर्शन करे, जबकि वर्ष भर में माँ पूर्णागिरी धाम आने वाला श्रद्धालुओं की संख्या 25 लाख से अधिक रहे। उन बोली कि मेला का दौरान श्रद्धालुओं थे सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता छ, जो विगत वर्ष से अच्छी रहे।
1: इस बार का मेला जो है विगत वर्षों की अपेक्षाकृत जो है अवधि इसकी लंबी रही है, ये 100 दिन से ज़्यादा ये मेला चला है और इस मेले में अभी तक जो है लगभग 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेला जो है वो बड़ा निर्बाध रूप से चला है और जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं उनको जो सुविधाएँ प्रदान की जा सकती थी, जो जो कमियाँ थी उसको सुधार किया गया, उनको सभी सुविधाएँ प्रदान की गई और जो श्रद्धालु सुविधाएँ थे उनको और भी बेहतर किया गया। इसमें भारतीय रेल ने भी हमारा सहयोग किया, नगर पालिका और जो जिला पंचायत जो इसकी जो मूल संस्था है जो इसको चलाती है उन लोगों के द्वारा भी बहुत बढ़िया काम किया गया है। तो एक बड़ा ही अच्छे क्रियान्वयन जो है मेले का यहाँ पर किया गया है और वो मेला समाप्त हुआ, लेकिन जो हमारा जो दर्शन का कार्य है वो अभी भी निरंतर चलता रहेगा।
0: उधम सिंह नगर जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काफी सफल रहे छ। जिला में लिंगानुपात में निरंतर सुधार हुए छ और बालिका शिक्षा थे बढ़ावा देण खुण जिला प्रशासन थे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुकी छ। लिंगानुपात में निरंतर उन्नति का कारण उधम सिंह नगर जिला का देश का शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की सूची में शामिल करे जा चुकी छ। जिला में लिंग अनुपात बढ़ीकर 957 वेगे, जो कि पहली काफी कम छो। जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी ने बताया कि जिला में लिंगानुपात में क्रांतिकारी बदलाव दिखने को मिलनो छ।
2: बेटियों की संख्या अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 1000 पुरुषों पर 957 का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हमारे यहाँ आ गया है, तो ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट है वो भी कम हुई है, तो बदलाव तो बिल्कुल स्पष्ट से दिखाई दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हमने जो गाँव से लेकर के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के सेकेंडरी विद्यालय डिग्री कॉलेजों में हमने प्रत्येक स्तर पर ये महिलाओं से बालिकाओं से टीचर्स से एक अभियान चलाया गया था कि बेटियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें सकारात्मक परिवर्तन हो, बेटी को भार न समझा जाए और बेटी को शिक्षा में उतनी प्राथमिकता दी जाए जितना एक बेटे को देते हैं, तो उसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
0: गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी नागदेव रेंज का कमंद गांव में एक गुलदार पिंजरा में कैद हुए। गुलदार थे रेस्क्यू कर स्वास्थ्य परीक्षण खून रेंज कार्यालय ले गए। गढ़वाल वन प्रभाग की SDC आयशा बिस्टन बताई कि गत 15 मई थे ग्राम सभा थली का कमंद गांव में गुलदारन एक व्यक्ति पर हमला करी और वे का बाद वे की मृत्यु हुएगी, जैके बाद क्षेत्र में गुलदार थे कैद करण खून पिंजरा लगाए गए। साथ ही क्षेत्र में लगातार गश्त करे जाने चे। उन बताई कि आज सुबेर कमंद गांव का पास लगाए गए एक पिंजरा में गुलदार कैद हुए, जैथे स्वास्थ्य परीक्षण खून रेंज कार्यालय लाए गए। उन ग्रामीणों थे सतर्क रहने की अपील कैरी। अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बोली कि सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को शीघ्र समाधान करे जलू। चारधाम यात्रा थे सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने खुण उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को देहरादून स्थित कंट्रोल रूम में महत्वपूर्ण भूमिका निभानो छ। सोमवती अमावस्या स्नान का बाद हरिद्वार में रात भर चली सफाई अभियान, 90 ट्रैक्टर कूड़ा एकत्रित कर वे को निस्तारण करे जालो और चंपावत में माँ पूर्णागिरी मेला संपन्न, ये वर्ष 25 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करी। या कदगढ़ी गढ़वली प्रादेशिक समाचारों को यह अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

FM 107.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं, यो कार्यक्रमक प्रायोजक छे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत छू आपू सभी लोग न कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में आपू लोगों दगाड़ खेती बाड़ी बटी जुड़ी हुई बातचीत करूल, आपू लोगों के जानकारी दियुल और दगाड़ में आपू लोगों के मनोरंजन ने करूल लोकगीतों दगाड़। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में सबूह पहली बात करनू नीमेटोड प्रबंधनक बारे में। श्रोताओं, नीमेटोड जैके सूत्र क्रमी ले कई जा यो माट में रुणी वाल या सूक्ष्म जीव छे जो पौधों के नुकसान पहुँचे दिनी, यो खास तौर पर पेड़ों जड़ों के ज़्यादा नुकसान पूजनी। और श्रोताओं, एक बार अगर यह सूक्ष्म जीव खेतों में फसलों में लग जानी तो यो फसल के बहुत नक तरीके ले प्रभावित कर देनी। तो यस में इनर प्रबंधन करण बहुत आवश्यक हूँ ताकि बखत पर इनर प्रबंधन करवेर इनुबटी छुटकारा लिबेर अपन फसल के बचाई जा सको। तो श्रोताओं, नीमाटोड प्रबंधनक लीजी जो मुख्य बात आप लोगों के ध्यान में धरण चैनी वो यो छे कि गर्मियों के मौसम में खेतों में गहरी जुताई कर देने चे और माट के भली भाग घाम में तपे लेने चे। किले की श्रोताओं, गर्मी के दिनों में मौसम में बहुत चटकदार धूप रहे तो यस में जब बहुत तेज घाम हो तो खेतों की जुताई कर लेने चाहें ताकि वो जो माट छू और उनमें मौजूद जो नमी छू वो थोड़ कम है जो और माट भली के तत् जो। ये के अलावा खेतों में जैविक खातक उपयोग करण चाहें, किले की जैविक खाद या फिर आप लोग कह सकता वर्मी कंपोस्ट खाद आप लोग खेतों में डाल सकता जेल कीट प्रबंधन में मदद मिले। यह के अलावा श्रोताओं, अगर खेतों में पेड़ों जड़ों में नीमाटोड यानी कि यह जो सूत्रकृमि छे इनर प्रकोप ज़्यादा देखण फैजा तो यस में आपू लोग कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लिबेर नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्रों बटी संपर्क करवेर थोड़ बहुत रासायनिक दवाइयों छिड़काव ले अपन खेतों में कर सकता। तो श्रोताओं, कुल मिलेबेर कुड़ों का मतलब यह छू कि ये जो नीमाटोड छे या फिर जो सूक्ष्म जीव यो छे जो आम तौर पर नग्न आँखों हमके नहीं दिखाई दी इनर प्रबंधन करण बहुत आवश्यक हूँ। किले की अगर खेतों के इसी के छोड़ दी जाओ और खेतों में बखत बखत पर खादक प्रबंधन खरपतवारक प्रबंधन या फिर माटक देखभाल नहीं करी जाए तो येल फसलों के लिए नुकसान हो तगड़ में माट के लिए नुकसान हो। तो यस में आप लोगों के नन नन बातों ध्यान जरूर धरण से ताकि आप लोगों की फसल खराब नहीं हो और जो मेहनत आप लोगों फसल बूण में कर रखी वीक उके उगुण में कर रखी तो वीक उत्पादन आप लोगों के भल मिलो। और स्वाभाविक बात छू कि जब आप लोगों के उत्पादन भल मिलूँ तो फिर वील आप लोगों की आर्थिक आय ले भली हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंग

0: ये फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
1: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: और श्रोताओं, आप कार्यक्रम में अगली बढ़नू और आप लोगों के सुनू खेती बचाओ अभियान अंतर्गत सतत कृषि प्रणाली में फसल चक्रक लाभ विषय पर चौबटिया रानीखेतक उद्यान विकास अधिकारी श्री युगल शर्मा दगड़ करी हुई हमारी बातचीत।
5: तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं चौबटिया रानीखेत के उद्यान विकास अधिकारी मिस्टर युगल शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद नेहा जी।
5: तो सर, कार्यक्रम में आज हम आपसे जानकारी लेंगे फसल चक्र के बारे में कि फसल चक्र क्या है और इसको अपनाना क्यों जरूरी है और किसान भाई बहन फसल चक्र अपना कर किस तरीके से अपनी खेती बाड़ी को और भी समृद्ध बना सकते हैं। तो सर, ये फसल चक्र होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए।
6: जी बिल्कुल नेहा जी। फसल चक्र नेहा जी, ये एक ऐसी वैज्ञानिक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में हम क्या करते हैं कि एक निश्चित क्रम में, निश्चित जो टाइम फ्रेम है उसमें हम अलग अलग फसलों को बोते हैं। अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो हर फसल जो होती है वो मिट्टी से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व लेती है और वो मिट्टी में अलग अलग जो उसके केमिकल्स हैं वो ड्रॉप करती है। तो हमारा किसान भाइयों बहनों से ये कहना है कि हमें अलग अलग फसलें इसलिए लेनी जरूरी हैं ताकि जो हमारी मिट्टी है उससे पोषक तत्वों का ह्रास कम से कम हो और मिट्टी आने वाली जनरेशन के लिए भी बने रहे। जैसे मान लीजिए हमारे किसान भाइयों ने, चाहे वो पहाड़ के हों या प्लेन्स के हों, उन्होंने पहली फसल गेहूं की ली मान लीजिए जाड़े के मौसम में। उसके बाद अगर वो कोई दलहन फसल दाल में चना मूंग और उसके बाद तीसरे सीजन में वो तिलहन या कोई सब्जी, तो हर एक ईयर राउंड वो अलग अलग क्रॉप्स अगर लेंगे तो उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बनी रहती है। तो फसल चक्र का बेसिक मीनिंग ये है कि अलग अलग तरह की क्रॉप साल में लेना जिससे कि मिट्टी का भी नुकसान ना हो।
5: बिल्कुल। तो सर, फसल चक्र का जैसे आपने मतलब हमें बताया, तो फसल चक्र को अपनाना इतना आवश्यक क्यों माना जाता है?
6: बिल्कुल, ये काफी जरूरी सवाल है और इसी सवाल को अगर हमारे किसान भाई बहन समझ जाएं तो बहुत सारी चीजें जो खेती में आजकल कमियां आ रही हैं वो आसानी से सुलझ सकती हैं। पहली चीज तो ये है कि जो अलग अलग क्रॉप हैं, मान लो कि वीट है, गेहूं है या मक्का है या फिर जैसे मडुआ है, तो हर क्रॉप जो होती है वो अलग न्यूट्रिएंट सॉइल से लेगी। मेजर जो न्यूट्रिएंट हैं, मेजर जो पोषक तत्व है मिट्टी में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, अगर हम एक ही तरह की क्रॉप लेंगे तो कुछ टाइम बाद कैसे होगा? अब आपको पता होगा कि हमारे देश में जब हरित क्रांति आई थी तो पंजाब और हरियाणा वाले इलाके में काफी ग्रोथ, काफी डेवलपमेंट हुआ था बहुत तेजी से। लेकिन अभी हम वहाँ क्या पा रहे हैं, वहाँ क्योंकि वो एरिया हमारे देश का वीट और राइस, वहाँ प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ, वीट और राइस के प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी आई, उत्पादन बहुत बड़ा वहाँ हरित क्रांति के टाइम। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ के किसान सेम क्रॉप लेते रहे तो उससे क्या हुआ कि वहाँ की सॉइल में अभी करंटली इस टाइम पे जिंक की भारी डिफिशियंसी है। तो ये मैं किसान भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि एक ही तरह की क्रॉप लेने से वो, क्योंकि मान लो हम गेहूं लेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा जिंक निकाल लेगी और वहाँ की सॉइल में जिंक की डिफिशियंसी हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है हमें क्यों अपनाना चाहिए, उसमें ये है कि जो फसल में बीमारियां आती है ना, हर फसल में बीमारियां स्पेसिफिक होती है। एक मान लीजिए हमने सरसों लगाया तो सरसों में जो कीड़ा आएगा, जो कीट आएगा वो स्पेसिफिक है। अगर हम उसी क्रॉप को रिपीट करेंगे तो वो कीड़ा उस एरिया में मतलब अपना हब बना लेगा वो हमेशा के लिए वहाँ। तो हम क्रॉप रोटेट करेंगे तो ना कोई बीमारी और ना ही कोई कीट वो अच्छी तरह से पनप पाएगा।
5: बिल्कुल।
6: और एक और पॉइंट है इसमें कि जो खरपतवार नियंत्रण है, अगर हम क्रॉप चेंज करते हैं तो क्रॉप के अकॉर्डिंग ही जिस तरीके से कीट होते हैं उसी तरीके से खरपतवार भी क्रॉप के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये जो खरपतवार या फिर जिसे वीड कहते हैं वो भी कंट्रोल किया जा सकता है क्रॉप के उससे। और कई सारी

0: क्रॉप्स हैं जैसे हमारी पहाड़ों की जो लोकल क्रॉप्स है, मडुआ, झंगोरा, इन सब में क्या है कि ये हमारी कम न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग क्रॉप होती है और कम वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप होती है। तो अगर हम क्रॉप रोटेट करें और इन फसलों को भी बीच में डालें तो क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो है वो भी अच्छी कंडीशन में बनी रहती है और हम फसल बदलते रहेंगे। उससे क्या है कि फसल बदलने से अगर हम मान लीजिए गेहूं के बाद अगर हम कोई दलहन की फसल लगा रहे हैं तो दलहन की फसल क्या होती है, वो मिट्टी में पोषक तत्व ऐड करती है। तो जब कोई फसल हमारी मिट्टी में खुद ही पोषक तत्व ऐड कर रही है तो हमारी जो उत्पादन में लागत आती है, जो हम खुद यूरिया और डीएपी फसलों में डाल रहे हैं, तो उसकी हमें कम जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ये है कि हमें फसल चक्र क्यों अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सर आपने जैसा बताया भी कि फसल चक्र जब किसान भाई बहन अपनाते हैं तो उससे मिट्टी की सेहत पर भी कुछ न कुछ असर पड़ता है। तो सर फसल चक्र जो है वो खेत की उपजाऊ शक्ति को किस प्रकार से बढ़ाता है, या फिर फसल चक्र अपनाने से खेत की जो उपजाऊ शक्ति है या मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कैसे प्रभावित होती है?
0: तो फसल चक्र से मिट्टी जो है उसकी जो शक्ति है या फिर उसकी जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें उसकी न्यूट्रिएंट जो कैपेसिटी है उसके तीन तरीके से प्रभाव पड़ता है। पहला है भौतिक प्रभाव, जिसे फिजिकल प्रभाव कहेंगे, रासायनिक प्रभाव और जैविक प्रभाव। तो भौतिक जो प्रभाव पड़ता है फसल में, तो अगर हम अलग अलग तरह की फसलें लगाएंगे तो क्या होता है कि किसी फसल की जो जड़ होती है वो कम नीचे तक जाती है और किसी की डीप रूटेड होती है, किसी की डीप, किसी की शैलो, कोई जड़ नीचे जा रही है कोई ऊपर ही रह रही है। तो उससे क्या है कि मिट्टी में भुरभुरापन बने रहता है और जमीन के नीचे मिट्टी में एक हार्ड पैन नहीं बनता है, मिट्टी नीचे सख्त नहीं होती है, जो कि एक तरह की फसल लगाने से मिट्टी सख्त हो सकती है, जिससे कि पानी का मूवमेंट और हवा का मूवमेंट, क्योंकि हमें ये लगता है कि हवा केवल मिट्टी के ऊपर है, मिट्टी के अंदर भी हवा और पानी दोनों का मूवमेंट रहता है और फसल चक्र को जारी रखने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी चीज जो रासायनिक प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव में एक प्रोसेस है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये करती है हमारी लेग्यूम्स क्रॉप। लेग्यूम क्रॉप होती है जो दलहन फसलें होती है, तो दलहन फसलें अगर हम लगाएंगे तो वो खुद ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, जो वो मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ा रही है। तो हमें जो हम यूरिया डाल रहे हैं, अगर हम दलहन की फसलें लगाएं तो जितना हम मान लीजिए कोई किसान एक कट्टा यूरिया डाल रहा है तो उसकी जगह उसे आधा ही डालना पड़ेगा। ये तो रासायनिक फायदा है। और जैविक फायदे में ये है कि अगर हम क्रॉप रोटेशन करें, फसल चक्र का उपयोग करें, तो क्या होता है कि मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जो हेल्पफुल माइक्रोब्स होते हैं जो फसल को बढ़ने में मदद करते हैं। तो बेसिकली ये फायदे हैं।
1: बिल्कुल। तो सर जो भी आपने अभी हमें फायदे बताए उससे किसान भाई बहन हमारे ये समझ सकते हैं कि फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे किसान भाई बहन फसल चक्र अपनाना चाहें तो वो फसल चक्र में किन किन फसलों को शामिल कर सकते हैं?
0: देखिए, फसल चक्र में हर तरीके की फसल का अपना योगदान है। हम केवल ये नहीं कहेंगे कि आप अनाज ना उगाएं, क्योंकि अनाज हमारी जो स्टेपल फूड है, बेसिक हमारे हर दिन हर समय के खाने में अनाज जरूरी होता है, तो वो तो उगाना ही है। उसके साथ जो हम उगा सकते हैं तिलहन फसलें, दलहन फसलें, और एक आती है ग्रीन मेन्योरिंग क्रॉप जिसे हरी खाद फसलें कहते हैं, जैसे ढेंचा, सनई, बरसीम। दलहन फसलों की तरह ये भी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जिसे कि हम कहते हैं मिट्टी में जो कार्बन की मात्रा होती है वो बढ़ाता है। तो हमें हर तरह की फसल रोटेशन में लेनी पड़ेगी, अनाज की फसलें, दलहन, तिलहन, सब्जी और हरी खाद की फसलें।
1: तो सर इसके अलावा आजकल जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर परिस्थितियों के बारे में लगातार बात की जाती है और कई बार हमने ये देखा है, सुना है कि जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो हमारी फसलों पर भी पड़ रहा है। तो सर जलवायु परिवर्तन जैसी जो ये परिस्थितियाँ बन रही हैं, इसमें फसल चक्र को अपनाना किसानों को कैसे लाभ पहुँचा सकता है?
0: बिल्कुल नया जी, जैसे जलवायु परिवर्तन पर आपने डिस्कशन शुरू किया, तो जलवायु परिवर्तन से जो हमारे कृषि या उद्यान दोनों ही करने वाले जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको जो मेजर जो बड़ी परेशानियां जो आ रही हैं, पहली है अनियमित वर्षा, वर्षा जो है हमारी अनियमित हो रही है, और दूसरा है तापमान वृद्धि। तापमान पहले के मुकाबले अब जो एवरेज तापमान है वो ज्यादा है
1: जी।
0: और तीसरी जो चीज है कि मौसम का अचानक बदलना। अब पहले की तरह मौसम इतना प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है कि हम गेस करें कि ये जाड़े का मौसम है तो बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, अचानक ही मौसम चेंज हो रहा है। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए फसल चक्र में हम ऐसी जो फसलें हैं वो

0: कर सकते हैं जिनमें अनियमित वर्षा का ज्यादा फर्क न पड़े, जिनमें तापमान वृद्धि का कम फर्क पड़े। हमारी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, 13 में से 9 जिले नेहा जी कम्प्लीटली हिल वाले एरिया में है, और जो बचे 4 जिले हैं उनमें से भी 2 जिले में आधा मैदानी क्षेत्र है और आधा पहाड़ी क्षेत्र। केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से मैदानी है, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर। तो हमारी जो पहाड़ी कृषि पद्धति है, यहाँ पहले से ही हम ऐसी फसलों को उगाते रहे हैं, लेकिन पिछले 20-25 सालों में जो हमारी ट्रेडिशनल फसलें हैं पहाड़ों की, पहाड़ के लोगों ने किन्हीं कारण से उन्हें उगाना कम कर दिया है। लेकिन अब हमारी सरकार और हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार की तरफ से उन फसलों में, मैं बात कर रहा हूँ मंडुआ, झंगोरा, ऐसी फसलों की जिन्हें हम मिलेट कहते हैं, या फिर हमारी सरकार की तरफ से इन्हें श्री अन्न भी नाम दिया गया है, इनका MSP पिछले 2 सालों में काफी बढ़ाया गया है ताकि किसान इसको और ज्यादा लगाएं और उन्हें प्रोत्साहन मिले। उसका बीज भी जो श्री अन्न है, इसका बीज कृषि विभाग में 80% सब्सिडी में उपलब्ध है। तो और इसका MSP भी सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। ये जो मिलेट्स हैं, जो श्री अन्न है, मडुआ, झंगोरा, ये फसलें एक तो कम पानी का यूज करती हैं, इनमें न्यूट्रिएंट भी कम इन्हें चाहिए होता है, तापमान वृद्धि से भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हार्डी फसलें होती हैं, इन्हें हार्डी क्रॉप्स कहा जाता है। तो हमें ऐसी फसलों पे फोकस करना चाहिए, एक तो हमारे उत्तराखंड के हिसाब से श्री अन्न पे, और दूसरा अलग अलग अगर हम फसलें लगाएंगे, किसी का रूट सिस्टम, किसी की जड़ कम गहरी है, किसी की ज्यादा गहरी है, तो वो पानी का अलग अलग ढंग से अपटेक करेगी, जो मौसम का जो पानी की जो जरूरत है, कोई किसी की जड़ नीचे जा रही है वो नीचे वाले जोन से पानी ले रही है, किसी की ऊपर वाले जोन से, तो इससे क्या है कि हमारी जो मिट्टी में पानी का मॉइस्चर कंटेंट भी पूरी तरीके से डिप्लीट नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा।
1: सर, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फसल चक्र को अपनाने के लिए आप अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो जानकार है और वैज्ञानिक है वो खुद हमारा किसान ही है, क्योंकि किसान अपनी मिट्टी को समझता है, अपनी सॉइल को समझता है, और जो फसल चक्र है ये कोई नई विधा नहीं है, ये कोई नई तकनीक नहीं है, ये हमारे पुरखों की तरफ से चली आ रही है और काफी पुराने समय से चली आ रही है एक टेक्निक है। तो मैं बस किसान भाई बहनों को यही बेसिक बातें याद दिलाना चाहूंगा कि मिट्टी भी एक जीवित प्राणी है, क्योंकि मिट्टी में भी माइक्रोब्स हैं, मिट्टी को हम डेड कंसिडर ना करें, मृत ना समझे। तो हमें इस ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा कि आने वाली अगर हम फसल चक्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो मिट्टी में से उसके सारी जो पोषक तत्व हैं वो छीन लिए जाएंगे और हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को कुछ अच्छी मृदा नहीं दे पाएंगे। तो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और मिट्टी की जीवित क्षमता को समझते हुए अगर हम अपने खेत में भी अलग अलग तरीके की फसलें उगाएंगे तो हमारा खेत भी हरा भरा रहेगा और खेत की मृदा भी प्रसन्न रहेगी।
1: बिल्कुल। तो सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े और फसल चक्र को अपनाने से लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आप लोगों सुनी सतत कृषि प्रणाली के अंतर्गत फसल चक्र लाभ विषय पर उद्यान विकास अधिकारी श्री युगल शर्मा दगड़ हमारी बातचीत।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना,
4: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत।
3: श्रोताओ, आप कार्यक्रम में अखिल बर्णू और आप लोगों के सुनो मशरूम पोषण और मूल्य संवर्धन एक नई दिशा पर डॉक्टर स्वाति गर्ब्याल दगड़ कृष्ण सिंह लटवालेक यह बातचीत।
4: स्वतः उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक खेती धीरे धीरे सिमटती जा

0: और किसान बड़ी संख्या में मशरूम की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इस बदलाव के साथ किसान विभिन्न प्रकार की मशरूम किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर किसानों को जानकारी नहीं होती है कि पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के मशरूम की खेती करें, जिससे कम समय में उन्हें अधिक मुनाफा मिल सके। अधिकांश किसान पहाड़ी क्षेत्रों में बटन मशरूम की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बटन मशरूम की खेती के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता भी होती है और इसके कंपोस्ट को तैयार होने में लगभग एक माह का समय भी लगता है। आज मशरूम की संपूर्ण खेती एवं मशरूम पोषण और मूल्य संवर्धन की नई दिशा विषय पर हम बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर स्वाति गर्ब्याल जी को। आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पिथौरागढ़ में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: पहला प्रश्न तो मेरा मैम आपसे ये रहेगा कि मशरूम क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं?
1: देखिए, जो मशरूम है ना ही पौध है ना ही पशु, ना ही ये प्लांट किंगडम में आते हैं ना ही एनिमल किंगडम में, ये एक प्रकार का फंगस होता है
0: जी।
1: और क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। जो भी हमारे जैविक पदार्थ हैं, जो सड़ी गड़ी लकड़ियां हैं पत्तियां हैं, उनसे ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और अगर हम बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आमतौर पे दुनिया भर में 15,000 से 16,000 इसकी प्रजातियां हैं, लेकिन जो खाने योग्य हैं वो सिर्फ 2,000 प्रजातियां हैं। और अगर हम व्यवसायिक रूप की बात करें, जो हम खेती करते हैं जिसकी, वो कुछ ही हैं, जैसे कि ढिंगरी मशरूम है, बटन मशरूम है, शिटाके मशरूम है, हमारा पैडी स्ट्रॉ मशरूम है। और हमारे भारत में बटन मशरूम सबसे लोकप्रिय है
0: जी। लेकिन कहते हैं कि बटन मशरूम में जो संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो आपका क्या कहना है इस पर?
1: नहीं, संसाधनों की तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो अलग अन्य विभाग हैं जैसे कि उद्यान विभाग है, वो पूरा कंपोस्ट बैग जो रेडीमेड होता है वो प्रोवाइड करता है, देता है किसानों को, और बहुत ही सब्सिडाइज रेट में देता है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों को अपने से ही कंपोस्ट बना सकते हैं, लेकिन वो रेडीमेड भी मिलता है।
0: डॉक्टर साहब, कोई कृषक मशरूम की खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, किस प्रकार से वो शुरुआत कर सकता है?
1: देखिए, जो मशरूम की खेती के लिए सबसे पहले तो हमें एक कमरा चाहिए, एक ऐसा कमरा जो कि अंधेरा हो और थोड़ी बहुत उसमें नमी हो, तो ये सबसे ज़रूरत है। इसमें कोई खेत की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मशरूम के अंदर जो हमें एक स्टैंड लगाते हैं हम लोग, जिसमें हम मशरूम के बैग्स रखते हैं, तो वो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। और साथ साथ में ये बस ये बेसिक तरीका है जो कि हम मशरूम की खेती की तरफ जा सकते हैं। तीसरा है कि प्रशिक्षण, और मशरूम का प्रशिक्षण आप विभिन्न जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके एरिया के, वहाँ से ये ले सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली जैसे ढिंगरी मशरूम हो गया, बटन मशरूम हो गया, ये दो मशरूम की का प्रशिक्षण हम देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गैना में, अगर हम हमारे पिथौरागढ़ कृषि विज्ञान केंद्र की बात, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी चलता है ये।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस प्रकार से किसान भाई मशरूम की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इसके बीज की, स्पॉन की, तो वो कहाँ से किसान भाई प्राप्त करते हैं?
1: देखिए, स्पॉन तो जैसे अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र गैना की बात करें तो वहाँ भी अवेलेबल नहीं है, हम पन्नगर विश्वविद्यालय से मंगाते हैं। तो उत्तराखंड के समस्त जो किसान हैं, अगर वो इस ओर जाना चाह रहे हैं, तो पन्नगर विश्वविद्यालय से जो मशरूम डिपार्टमेंट है उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं देहरादून में, वो भी मतलब देते हैं मशरूम के बीज, लेकिन वहाँ से उनको विश्वविद्यालय से उनको ज़्यादा कम रेट में पड़ेगा।
0: डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है किसानों का मशरूम तो उत्पादित हो जाता है अच्छी मात्रा में, फिर कई बार क्या होता है कि उनको बाजार में उसका रेट जो है वो अच्छा नहीं मिल पाता है। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है पोषण और मूल्य संवर्धन की नई दिशा, तो हम अगर मूल्य संवर्धन की बात करें तो जो मशरूम की खेती है वो किसानों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है और किस प्रकार से वो इसका ज्यादा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मार्केट में अगर डिमांड नहीं मिले
0: जी
1: लोगों को या किसानों को जो भी खेती कर रहे हैं, तो इसका मूल्य संवर्धित उत्पाद एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये एक आय को दुगनी कर सकता है। जैसे अन्य अन्य अगर मैं इसका बताऊं तो अचार, पापड़, लड्डू, मशरूम का प्रोटीन पाउडर भी मार्केट में बना के बेच सकते हैं। और ये सारे प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र आपको देता है। प्रशिक्षण प्राइवेट से भी ले सकते हैं और हमारे सेंटर से भी ले सकते हैं, केंद्र से भी ले सकते हैं। और जब आप एक किलो अगर मशरूम, सपोज बटन मशरूम आप बेच रहे हैं, तो वो 400 रुपए किलो का बिकेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर आप एक किलो लड्डू बेच रहे हैं तो वो 600 से 700 रुपए किलो बिकता है। तो ये आपकी आय को दुगना कर रहा है, किसानों की आय को।
0: अच्छा, हम जब पोषण की बात करते हैं तो जो मशरूम से तैयार उत्पाद हैं या फिर मशरूम है, उसमें किस प्रकार से जो उसको खरीद रहे हैं उनको किस प्रकार से पोषण उनको मिलता है?
1: तो जैसे जो मशरूम है हमारा, वो पोषक तत्वों से भरा है। जैसे हम जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है, जैसे

0: दालों में होता है लेकिन इतना अच्छा प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो मशरूम में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन पाया जाता है। साथ साथ में फाइबर काफी मात्रा में है इसमें, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है और यहाँ तक कि विटामिन डी भी पाया जाता है इसमें, विटामिन बी के साथ। और कुछ ही खाद्य पदार्थ है हमारे पूरी धरती में जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, और जब धूप की रोशनी मशरूम में पड़ती है तो वो विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। हमारे भारत में लगभग 70-80% जो जनता है वो विटामिन डी की कमी से ग्रसित है, हमें पता नहीं चलता, बाद में उसका असर दिखता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है और मतलब मुड़ जा रही है हड्डियाँ, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम इसका सेवन करें प्रतिदिन तो इससे हमें विटामिन डी की कमी, कैल्शियम इनकी कमी से निजात हम पा सकते हैं,
1: क्योंकि इसे सुपर फूड भी कहते हैं।
0: हाँ जी।
1: और आपने भी एक नई जानकारी दी कि विटामिन डी जो है इससे इसकी पूर्ति हो सकती है।
0: हाँ जी।
1: अधिकतर लोग, हम जैसे जो सामान्य व्यक्ति हो, ये समझते हैं कि धूप से ही ज़्यादातर इसमें मिल सकता है, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैम। मैम देखिए, धीरे धीरे उम्र जब बढ़ती है इंसान की तो उसकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होती है, और साथ ही कई जो अन्य बीमारियाँ हैं, मधुमेह है, वो भी उनसे ग्रसित हो जाता है इंसान। तो क्या मधुमेह जो रोग है उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: हाँ जी, मधुमेह रोगियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे क्या है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इस मतलब मशरूम का, वो कम होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में मैं बताऊंगी कि किसी भी खाद्य में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ये बताता है कि उसे खाने के बाद खून में कितनी तेज़ी से शुगर का लेवल बढ़ रहा है। तो मशरूम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सिर्फ 10 से 15 के बीच में है, जबकि 70 से ऊपर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं, जो चीनी का होता है या शहद का होता है। तो ये मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
1: मैम, जब हमने आपसे पूर्व प्रश्न में पूछा कि किस प्रकार से किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, साथ ही विपणन के लिए किस प्रकार की कोई नीतियाँ हैं इसमें सरकार की?
0: देखिए, जो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो तो जो NGOs चलाते हैं और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने होते हैं, जिससे बैंक फाइनेंस कराती हैं, फेडरेशंस बने होते हैं, FPOs बनते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मर्स उनमें जुड़ के, इन ग्रुप्स में जुड़ के साथ में कार्य करके विपणन का या प्रसंस्करण का, पैकेजिंग का कार्य कर सकते हैं। मतलब अकेला फार्मर ना करे तो ग्रुप में काम कर सकते हैं। तो बहुत मतलब है, काफी प्रोग्राम्स हैं।
1: किसान भाई किसान उत्पादक संगठन है और अपने आपसी समूह है, जैसे महिला स्वयं सहायता समूह हमारे गाँव में जो है कार्य कर ही रहे हैं, उनसे जुड़ करके इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं।
0: हाँ जी।
1: मैम, अगर हम इसमें रोजगार की बात करें, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या रोजगार के इसमें अवसर हैं?
0: देखो, मशरूम की खेती में अनेकों अवसर है, जैसे कि मशरूम फसल का उत्पादन करके बेच सकते हैं, साथ साथ में इसके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उसका भी उत्पादन करके बेच सकते हैं। अब बीज के लिए लेकिन हमें एक लैब चाहिए होगी, स्पॉन कहते हैं मशरूम के बीज को, तो उसके लिए लैब चाहिए होगी, उसकी प्रशिक्षण ले सकते हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र से चाहे यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। साथ साथ में इसका प्रसंस्करण, जो मैं मूल्य संवर्धन पे जोर दे रही हूँ, दूसरा है हमारा पैकेजिंग पे कर सकते हैं, विपणन पे कर सकते हैं। तो ये बहुत अनेकों विकल्प है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब चीज़ कर सकते हैं। एक ग्रुप अगर सीड का काम कर रहा है तो दूसरा ग्रुप उसको मूल्य संवर्धन का काम कर सकता है या फसल उत्पादन का काम कर सकता है, तो अनेकों विकल्प हैं।
1: आपने जो बटर मशरूम और ऑयस्टर की बात की, जिसे हिंदी में हम ढिंगली मशरूम भी कहते हैं, ये लगाया जाता है, तो जो ऑयस्टर मशरूम है उस पर थोड़ा सा किसान भाई किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, इस पर थोड़ा विस्तृत रूप से अगर आप हमारे किसानों को बताना चाहें।
0: जी, जो ओयस्टर मशरूम है, जिसे हम हिंदी में ढींगरी मशरूम भी कहते हैं, वैसे तो आमतौर पे इतने प्रचलित में नहीं है ये, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बटन से ज़्यादा होती है, तो ये सीधे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो ले जाते हैं दवाई बनाने के लिए। और इसकी खेती वो भी बहुत सरल है, क्योंकि इसमें जो हमारे कृषि अवशेष हैं, जैसे कि गेहूँ का भूसा है, धान की पुआल है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो हमें भूसा चाहिए होता है, भूसे के बाद हम उसे 24 घंटे तक उस भूसे को भिगाना पड़ता है, चाहे गेहूं का हो चाहे धान की पुआल हो, उस भिगाते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे फंजीसाइड हो गया, बेविस्टीन, फिर हमारा फॉर्मेलिन हो गया, उसका यूज़ करते हैं। दूसरे दिन हम जो भी पानी है उसको पूरा निकाल के फिर उसमें बीज का छिड़काव करते हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही कम लागत में होने वाली फसल है।
1: डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण चर्चा में कोई बात छूट गई जो आप हमारे किसानों के साथ साझा करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
0: मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें रोजाना अपने दैनिक आहार में मशरूम को शामिल जरूर करना
1: चाहिए।
0: हाँ जी।
1: और आंचलिक भाषा में जियो नाम से प्रसिद्ध इस मशरूम को किसी बैंकों से ऋण और
2: श्रोताओं, मशरूम संवर्धन पर यही बातचीतक दगड़ आज किसान वाणी कार्यक्रम इतनी संपन्न कर

0: नमस्कार, यो कार्यक्रमक प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी FM 16.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बैठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नक दगड़ में श्याम भट्ट। पहली मुख्य समाचार। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल कौच सेवारत मासाबों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता जल्दी समाधान करी जालू। चार धाम यात्रा के सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषदक देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रहा। सोमवती अमावस्या स्नानक बाद हरिद्वार में रात भर चली सफाई अभियान। 90 ट्रैक्टर कूड़ इकट्ठे कर बेर वीक निस्तारण करीगो। और चंपावत जिले में माँ पूर्णागिरी में सम्पन्न ये साल 25 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं दर्शन करियान। अब समाचार विस्तार। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल कौश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर काम करने मासाबों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता से जुड़ियक मुद्दक जल्दी समाधान करी जालो। एक लिजी विभागीय अधिकारियों के शिक्षक संगठनों से बातचीत करवेर व्यवहारिक और सही प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दी जा रही। इस संबंध में देहरादून में आयोजित बैठक में डॉक्टर रावतल कौश की राज्य में कक्षा 1-8 तक पढ़ोन्य लगभग 20,000 मासाबों के ये महत्वपूर्ण समस्या से जुड़ियक सब पहलुओं का गंभीरता अध्ययन करी जालो। उन्होंने अधिकारियों के और राज्यों में TET अनिवार्यता के लिबेर अपनाई गई मॉडल और ली गई निर्णयों का विस्तृत अध्ययन कर बेर रिपोर्ट प्रस्तुत करने थाले कौच। बैठक में मासाबों की पदोन्नति से जुड़ियक मामलों पर चर्चा ले भेज शिक्षा मंत्री उच्च न्यायालय में लंबित पदोन्नति संबंधी मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने का निर्देश दियान, जैल की मासाबों के जल्दी प्रमोशन का लाभ मिल सको। चारधाम यात्रा के सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषदक देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रहा। अत्याधुनिक तकनीकल सुसज्जित एक कंट्रोल रूम में 24 घंटे धामों में कैमरों द्वारा यात्रियों की निगरानी करने के दगड़ उनक समस्याओं के तुरंत समाधान और यात्रा संचालन की लगातार निगरानी करी जन्ने। उप निदेशक पर्यटन अमित लोहनील बतास की आज तक 45,000 रह ज्यादा कॉल मिल रहे हैं। एक अदगड़ उनक निस्तारण ले करी जा रहा। उन्होंने बतास की चार धाम यात्रा में पंजीकरण कराया यात्रियों के व्हाट्सएप बैठे मौसम की जानकारी ले लगातार दी जन्ने।
3: इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अपने पंजीकरण हेली सेवाएं रहने की व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके। अभी तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से और उनका सफल निस्तारण किया जाता है। और इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं इनको हम अन्य विभागों के साथ जैसे पुलिस हेल्थ आपदा इनके साथ भी इनको हम साझा करते हैं और उनकी मदद से उनको उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है ये सभी विभागों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके।
2: हरिद्वार जिले में मतदाता जागरूक अभियान के गति देने का उद्देश्य जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षितल आज कैंप कार्यालय बैठी स्वीप वाहन के हरी झंडी दिखावे रवाना करी। यह अवसर पर उन्होंने कौश की लोकतंत्र मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होन और मतदान प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता जरूरी छे। स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत संचालित युवाहन जिलक सब विधानसभा क्षेत्रों में जाबेर आम जन के मतदाता पंजीकरण मतदाता सूची संशोधन विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और मतदानक महत्व के लिए जागरूक कर लू। वहीं उत्तरकाशी जिले में स्वीप कार्यक्रमक अंतर्गत आज जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोशियाड़ा में मतदाता जागरूकता शिविर लगाई गो। ये दौरान युवाओं के मतदाता सूचिक विशेष गहन पुनरीक्षण गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया और मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के महत्व की जानकारी दी गई।
4: प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में उपलब्ध छन। ताजा

समाचार नक लीजिए अपू लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। ब्यावी सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में आयोजित स्नान पर्व में 76 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं आस्था की डुबकी लगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं उनक कारण अलग अलग गंगा घाटों और सार्वजनिक स्थलों में ठूली मात्रा में कूड़ एकत्रित भौज। जयकर नगर निगम की टीमल युद्ध स्तर में अभियान चला बेर साफ करी। नगर निगम रात भर लगातार काम करते हुए लगभग 90 ट्रैक्टर कूड़ एकत्रित कर बेर वीक निस्तारण करी। आज रत्ते 4 बजे तक सब प्रमुख घाटों और आसपास के क्षेत्रों है कूड़ हटावेर सब जगहों की सफाई काम पूर करी गो। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की असाधारण संख्या के बाद ले निर्धारित पखत में सब प्रमुख घाटों और बाटों की सफाई पूरी करी गई, जो नगर निगम काम करने के सुव्यवस्थित तरीक और कर्मचारियों के अथक मेहनत का परिणाम छे। चंपावत जिले में लगभग

0: हेतु है कूड़ हटावेर सब जगहों सफाई काम पूर करेगो। नगर निगमक अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं के असाधारण संख्या के बाद ले निर्धारित पखत में सब प्रमुख घाटों और बाटों की सफाई पूरी करी गए, जो नगर निगमक काम करने के सुव्यवस्थित तरीक और कर्मचारियों के अथक मेहनतक परिणाम छे। चंपावत जिले में लगभग 3.5 महीने बठे चल्यक माँ पूर्णागिरी म्याव आज संपन्न है गो। जिलाधिकारी मनीष कुमार बतास की ये साल म्याव में 25 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन करियान, जबकि साल भर में माँ पूर्णागिरी धाम उन्ने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख है ज्यादा रहे। उन्होंने कहा कि म्यावक दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षित सुगम और सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था दिलुण प्रशासनिक प्राथमिकता थी, जो पिछले सालों हले भल रहे।
1: इस बार का मेला जो है विगत वर्षों की अपेक्षाकृत जो है अवधि इसकी लंबी रही है, ये 100 दिन से ज़्यादा ये मेला चला है और इस मेले में अभी तक जो है लगभग 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेला जो है वो बड़ा निर्बाध रूप से चला है और जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं उनको जो सुविधाएँ प्रदान की जा सकती थी, जो जो कमियाँ थी उसको सुधार किया गया, उनको सभी सुविधाएँ प्रदान की गई और जो श्रद्धालु सुविधाएँ थे उनको और भी बेहतर किया गया। इसमें भारतीय रेल ने भी हमारा सहयोग किया, नगर पालिका और जो जिला पंचायत जो इसकी जो मूल संस्था है जो इसको चलाती है उन लोगों के द्वारा भी बहुत बढ़िया काम किया गया है। तो एक बड़ा ही अच्छे क्रियान्वयन जो है मेले का यहाँ पर किया गया है और वो मेला समाप्त हुआ, लेकिन जो हमारा जो दर्शन का कार्य है वो अभी भी निरंतर चलता रहेगा।
0: उधम सिंह नगर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत सफल रहो। जिले में लिंगानुपात में लगातार सुधार है रहो और चली शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के राष्ट्रीय स्तर पर ले सम्मानित करी जा रहो। लिंगानुपात में लगातार बढ़तक कारण उधम सिंह नगर के देशक शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की सूची में शामिल करी जा रहो। जिले में लिंग अनुपात बढ़ बेर 957 है गो, जो पहले बहुत कम छू। जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी बतास की जिले में लिंगानुपात में क्रांतिकारी बदलाव देखने के मिलन लग रहा।
2: बेटियों की संख्या अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 1000 पुरुषों पर 957 का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हमारे यहाँ आ गया है, तो ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट है वो भी कम हुई है, तो बदलाव तो बिल्कुल स्पष्ट से दिखाई दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हमने जो गाँव से लेकर के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के सेकेंडरी विद्यालय डिग्री कॉलेजों में हमने प्रत्येक स्तर पर ये महिलाओं से बालिकाओं से टीचर्स से एक अभियान चलाया गया था कि बेटियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें सकारात्मक परिवर्तन हो, बेटी को भार न समझा जाए और बेटी को शिक्षा में उतनी प्राथमिकता दी जाए जितना एक बेटे को देते हैं, तो उसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
0: गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी नागदेव रेंजक कमंदे गांव में एक गुलदार पिंजर में कैद है। गुलदार के रेस्क्यू करबेर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रेंज कार्यालय लाई जा रहा। गढ़वाल वन प्रभाग SDO ऐसा बिस्टल बताश की पिछले 15 मई इनके ग्राम सभा थलीक कमंद गांव में गुलदारल एक मनखे पर हमल कर बेर वी के मार दे छो। जैक बाद क्षेत्र में गुलदार के कैद करने के लिए पिंजर लगाई जा रो छे। दगड़ा क्षेत्र में लगातार गश्तले करी जन्ने छी। उन्होंने बताश की आज रत्ते कमंद गांव में नजक पिंजर लगाई जा रही। एक पिंजर में गुलदार कैद रहो जैक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रेंज कार्यालय लाई गो। उन्होंने गाँव वाला थे सतर्क रोने की अपील करी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल कौच सेवारत मासाबों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता जल्दी समाधान करी जालो। चार धाम यात्रा के सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषदक देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रहा। सोमवती अमावस्या स्नान के बाद हरिद्वार में रात भर चली सफाई अभियान, 90 ट्रैक्टर कूड़ एकत्रित कर बेर वीक निस्तारण करीगो। और चंपावत जिले में माँ पूर्णागिरी म्याव संपन्न, ये साल 25 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं दर्शन करियान। एक दगड़ कुमावनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त भय। नमस्कार।
3: FM 14.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:40 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हद कर दिया आपने फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं आनंद राज आनंद, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

हद कर दिया आपने। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का गाया दाग द फायर फिल्म का गीत। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

दाग द फायर। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आइए आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह का गाया ताल फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में भी आपने ताल फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। तीजे पेश है मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस। आज के सबरस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं जमील मुजाहिद के कलम से। फनकार हैं पंकज उदास।

अदनान सामी का गाया ये गीत अभी आपने सुना। आइए हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद उस्मान आरिफ नक्शबंदी का कलाम। फ़नकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

0: हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ कार्यक्रम में है हर मैच का ताज़ा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक डिटेल्स के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने, कल खेले गए सभी चार मुकाबले ड्रॉ। भारतीय टीम FIH हॉकी विमेंस नेशन कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हुआ। थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ करेंगे भारतीय चुनौती का नेतृत्व। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी, और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाएगा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं वायरल फुटबॉल फीवर के साथ, जहां पूरी दुनिया के ऊपर फुटबॉल का ये खुमार सर चढ़ के बोल रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के न्यू जर्सी में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात्रि 12:30 बजे से शुरू होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे के करीब खेला जाना। इससे पहले कल फीफा विश्व कप में कई उलटफेर देखने को मिले। विश्व कप में 68 साल बाद एक ही दिन खेले गए 4 मुकाबले ड्रॉ रहे।
1: फीफा विश्व कप 2026 में कल इस सत्र का सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया, जहां केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए विश्व कप की प्रबल दावेदार स्पेन को गोल रहित बराबरी पर रोक दिया, और इस मैच के हीरो केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा रहे, जो एक ढाल की तरह गोल कोस्ट पर डटे रहे और कई गोल बचा कर टीम की रक्षा की। इस मुकाबले के बाद वोजिन्हा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: For this moment, for this dream, a lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve. Many of ex-football players from national team, and now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot.
1: एक और ड्रॉ मुकाबले ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही। कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेला गया ये मैच बेहद रोमांचक रहा, जहां न्यूजीलैंड ने एलिजा जेस्ट के 2 गोलों की बदौलत पहले 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन ईरान ने शानदार पलटवार करते हुए 2 गोल दागे और मुकाबले को ड्रॉ करा दिया। दिन का तीसरा ड्रॉ मुकाबला सिएटल स्टेडियम में बेल्जियम और मिस्र के बीच देखने को मिला, जहां कांटे की टक्कर वाला ये मुकाबला 1-1 के बराबरी पर समाप्त हुआ। मिस्र विश्व कप में अपनी पहली जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन बेल्जियम के वैकल्पिक खिलाड़ियों के त्वरित जवाब ने उसे निराश कर दिया। मिस्र के इमाम अशूर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अमेरिका के मियामी स्टेडियम में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच ग्रुप एच का पहला मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। वहीं सऊदी अरब के लिए अब्दुल्लाह अल अमरी ने 41वें मिनट में रिबाउंड पर गोल किया, जबकि उरुग्वे के मैक्सी अराउजे ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ये फीफा का मंच है, जहां रोमांच, उम्मीदें, जज्बा और हुनर हर संभावना को नतीजे में बदलने की क्षमता रखता है। और अब US के बाद चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी विमेंस नेशन कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज पूल ए के मुकाबले में जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की की।
3: भारत ने पहले ग्रुप मैच में अमेरिका पर मिली रोमांचक जीत का सिलसिला आज ऑकलैंड के नॉर्थ हार्बर नेशनल हॉकी सेंटर में भी जारी रखा, और FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप के अपने दूसरे पूल ए मैच में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कप्तान सलीमा टेटे ने 33वें मिनट और लालरेम सियामी ने 49वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जापान के लिए एकमात्र गोल हिरा मित्सु ए ने 35वें मिनट में किया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 33वें मिनट में मिले एक पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर अपना खाता खोला। नवनीत कौर के शॉट को निक्की प्रधान ने सलीमा की तरफ धकेला, जिससे कप्तान ने बिना कोई मौका गंवाए गोल पोस्ट में भेजकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके ठीक 2 मिनट बाद जापान की हिरा मित्सु ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के आखिरी क्वार्टर में 49वें

0: मिनट में सुशीला चानू पुखराम बम ने सर्कल के किनारे से गोल की ओर एक तेज पास दिया, जिसे एक बेहतरीन गोल में बदलते हुए लालरेम सियामी ने भारत को जीत दिलाई। कप्तान सलीम टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम इस जीत के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत के 6 अंक हो गए हैं। भारत अब टूर्नामेंट के अपने आखिरी पूल ए मैच में 18 जून को उरुग्वे से भिड़ेगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार खेल से वापस एक बार फॉर्म में वापसी का शंखनाद कर दिया है। और अब बात बैडमिंटन की। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हो गया है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ मकाऊ में देश की चुनौती की अगुवाई करेंगे।
2: युवा भारतीय बैडमिंटन टीम मकाऊ ओपन में देश की अगुवाई के लिए तैयार है। आगे आने वाली एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए कई दिग्गज खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता से आराम दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सेमी

0: मकाऊ में देश की चुनौती की अगुवाई करेंगे।
1: युवा भारतीय बैडमिंटन टीम मकाऊ ओपन में देश की अगुवाई के लिए तैयार है। आगे आने वाले एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए कई दिग्गज खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता से आराम दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी का स्टार जोड़ी शामिल है। इन बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम का पूरा दाबोदार युवा और उभरते खिलाड़ियों पर है। पिछले साल मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थरूर मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स टीम की अगुवाई कर रहे हैं। अनुभवी किरण जॉर्ज, ऋत्विक संजीवी और शंकर सुब्रमण्यम भी इस दल का हिस्सा है, जबकि रौनक चौहान ने आज अपने दोनों क्वालिफायर मुकाबले जीतकर मुख्य ड्रॉ जगह बना ली है। महिला सिंगल्स की कमान ईशा रानी बरुआ के हाथ में है, जिन्हें अनमोल खरब और तस्मीन मीर का साथ मिलेगा। आकर्षि कश्यप, रक्षिता रामराज, श्रेयंसी वली शेट्टी, मानसी सिंह, श्रेया लेले और अश्मिता चालिहा भी भारतीय महिला सिंगल्स टीम का हिस्सा है। अगर डबल्स की बात की जाए तो भारत की एकमात्र पुरुष डबल्स जोड़ी और तीनों महिला डबल्स जोड़ी आज पहले ही दौर में बाहर हो गई। मिक्स डबल्स में पांच भारतीय जोड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय सटलर है जिन्होंने मकाऊ ओपन जीता है। सिंधु ने लगातार 2013 से 2015 तक लगातार तीन बार ये खिताब जीता था। अमीषा स्पोर्ट्स स्कैन।
0: तो नए जज्बे के साथ भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन के कोर्ट पर धमाल मचाने को तैयार हैं। और अब बात की जाती है फिट इंडिया की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल मुंबई के वर्ली सर्किल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि यह आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। मुंबई के सुरम्य समुद्र तट के मनोरम दृश्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 250 साइकिल चालक श्री मांडविया के साथ साइकिल चलाते हुए फिट इंडिया का संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी हो जाएगा। और अब बात की जाए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम की, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में चल रहा है। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है।
2: आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद हरमनप्रीत की विमेंस इन ब्लू के हौसले बुलंद हैं। दूसरे मुकाबले में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ग्रुप ए का ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से लीड्स के हेडिंगले मैदान में खेला जाएगा। एक तरफ जहां भारत ने 64 रन की विशाल जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। हरमनप्रीत की आर्मी के लिए इस मैच की राह काफी हद तक आसान नजर आ रही है। पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाली उप कप्तान स्मृति मंधाना से टीम को फिर एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी और टीम को अपनी दूसरी सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा से इस मैच में बड़े स्कोर की चाह रहेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की नज़र अच्छी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने पर होगी, जबकि पहले मैच में कुछ खास न कर सकी जेमिमा रॉड्रिक्स और भारती फुलमाली नीदरलैंड्स के सामने वापसी करते हुए फॉर्म हासिल करना चाहिए। पहले मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान को पस्त करने वाली दीप्ति शर्मा पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिनको श्री चरणी का भरपूर साथ मिलेगा। अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल भी गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम को मजबूती देती नजर आएंगी। इस दौरान BCCI ने टीम के लीड्स पहुंचने का एक वीडियो साझा किया। इसमें अपनी साथी अरुंधति रेड्डी के बारे में उप कप्तान स्मृति मंधाना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: Me to do the right things in terms of my preps and doing the right things on the ground.
2: भारतीय टीम के लिए ये मौका बेंच पर बैठे अपने खिलाड़ियों को आजमाने के लिए भी अच्छा अवसर है। दूसरी तरफ अपना पहला T20 विश्व कप खेल रही नीदरलैंड्स ने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा मुकाबला खेला था, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा। टीम की उम्मीदों का दारोमदार कप्तान और विकेटकीपर बेबेट डी लीडे के कंधों पर है, जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक की पारी खेली थी। उनके अलावा टीम को आयरिस ज्वेलिंग, हेदर सीजर्स, सिल्वर सीजर्स और कैरोलिन डी लैंग से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों का सामना करने से पहले भारतीय टीम की नज़र नीदरलैंड्स पर एक बड़ी जीत दर्ज कर ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।

0: और हरमनप्रीत की आर्मी के दूसरी तरफ शुभमन गिल एंड ब्रिगेड भी एक ऐसी ही बड़ी जीत की राह में लखनऊ पहुंच चुकी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाना है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इस श्रृंखला को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं मेहमान टीम अफगानिस्तान की नज़र ये मैच जीतकर श्रृंखला में वापसी करने पर होगी।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। धर्मशाला में अफगानिस्तान के ऊपर शानदार जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू कल सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और खेल के हर मोर्चे पर मजबूत नजर आ रही है। कप्तान शुभमन गिल का बल्ला IPL के बाद न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच और फिर पहले एक दिवसीय मैच में भी रनों का पहाड़ खड़ा करता नजर आया, जिनको इन फॉर्म KL राहुल का बखूबी साथ मिल रहा है और दोनों खिलाड़ी लगातार रन भी बना रहे हैं। हिटमैन रोहित शर्मा पर भी दर्शकों की नजरें होंगी। रोहित पहले एक दिवसीय मैच में दुर्भाग्यशाली रहे थे और 16 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे। पिछले कुछ एक दिवसीय मुकाबले को देखें तो रोहित का बल्ला शांत नजर आया है। ऐसे में 2027 विश्व कप की राह तलाश रहे रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भी अच्छे फॉर्म में है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्षेत्र में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो धर्मशाला में अपना डेब्यू करने वाले स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बरार से भी टीम को उम्मीदें होंगी, जिन्होंने अपने पहले मैच में 3-3 विकेट चटकाए थे। अर्जदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में उनका साथ देते दिखेंगे। ये श्रृंखला भारत के लिए 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में इस टीम की नजर हर मैच में अपना मनोबल बढ़ाने और बेहतर कॉम्बिनेशन तलाशने पर होगी। अगर मेहमान टीम अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनकी नजर किसी भी हालत में इस मैच को जीतकर श्रृंखला में वापसी और बराबरी करने पर होगी। पहले मैच में शतक बनाने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी लय में है। राशिद खान, अजमतुल्ला उमरजई और इब्राहिम जादरान से भी मेहमान टीम को उम्मीदें होंगी। अगर ये खिलाड़ी चलते हैं तो भारत के लिए काफी हद तक मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम की नजर तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए चेन्नई पहुंचने से पहले ही सीरीज अपने नाम करने पर होगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर होगी कि तीसरे मैच से पहले श्रृंखला को अपने नाम कर लिया जाए। वहीं दर्शकों की नजर होगी कि इस बार धर्मशाला की तरह बारिश इस खेल में कोई खलल डालती हुई नजर न आए। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक नई दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली 24 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान।

0: और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: नेता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्करे तैयबा, जैश-ए- मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
4: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
3: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
6: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability, and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
8: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
7: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low rainfall districts. Our correspondent has filed this report.
9: The Agriculture Minister gave a clear message that protecting farmers' interests is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. Mr. Chauhan gave clear directions that full preparations should be made in advance in those districts where there is a possibility of low rainfall or uneven rainfall. He said that such districts should be clearly identified and crop-wise contingency plans should be prepared in coordination with the state governments so that farmers can be provided immediate alternatives, advice and support that in any weather challenge situation. He strongly emphasized that special attention should be given to water conservation, moisture management, intercropping and alternative crop patterns. With Suparna Sekia, Rohan, Akashwani News, Delhi.
7: Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi, during which consensus was reached among six states on the long-pending Keshav multi-purpose dam project aimed at rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign an MOU for the implementation

आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं शराबी फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार। गीत लिखा है अनजान ने और इस गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी।

शराबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। आइए इंद्रधनुष कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं कस्मे वादे फिल्म का गीत। गीत को आवाज दे रहे हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

कस्मे वादे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 9:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी गजलों का प्रोग्राम महफिल।

फरमाइशी गज़लों व नज़मों की इस महफिल में हाजिर है आपका दोस्त भास्कर साह। सभी श्रोता मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब व सलाम। श्रोता मित्रों, आज की महफिल का आगाज करते हैं इन पंक्तियों के साथ। तुम्हारी एक नज़र की बात है, तुम्हारी एक नज़र की बात है, मेरी हर खुशी तुम्हारे साथ है। दोस्तों, इश्क एक ऐसा एहसास होता है जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है। कभी एक नज़र, कभी एक मुस्कान और कभी किसी का खामोश साथ ही पूरी दुनिया बन जाता है। दोस्तों, मोहब्बत में बड़ी बड़ी बातों की नहीं, छोटे छोटे एहसासों की अहमियत होती है। जब कोई दिल के करीब होता है तो उसकी एक नज़र ही हमें ख़ास बना देती है, उसकी मौजूदगी ही हमारी खुशी की वजह बन जाती है। दोस्तों, इश्क का रिश्ता शब्दों का नहीं मोहताज होता, ये तो एक एहसास है जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाता है। मोहब्बत में मैं और तुम का फ़र्क धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और एक खूबसूरत हम बन जाता है। तो आइए इसी प्यारे एहसास के साथ मोहब्बत की इस मीठी फिज़ा में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आज की महफिल की पहली फरमाइश, जो हमें भेजी है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूरम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। इस गज़ल के लिए हमें फरमाइश भेजी है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरी नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से। और इसी गज़ल के लिए एक और फरमाइश आई है जो हमें भेजी है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव, कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुन्नी बेगम की गाई ये गज़ल, मुझे अपने जब्त पे नाज था, मुझे अपने जब्त पे नाज था, सरे बज्म आज ये क्या हुआ, मेरी आँख कैसे छलक पड़ी, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। मुन्नी बेगम।

सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू और शिखा शेफाली। आप सभी सुनना चाहते हैं प्रशांत वसल की का ये कलाम। फनकार हैं भूपेंद्र सिंह। मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं, मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं, जिन्हें गैर समझा वो काम आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह।

जो नज़र बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी, जो नज़र बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी, ये मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से घर है मिला हुआ, मुझे अपने जब्त पे नाचता। मुन्नी बेगम की गई ये गज़ल अभी आपने सुनी। आइए शामिल करते हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गज़ल के लिए अगली फरमाइश हमें भेजी है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं चंद्रकांत सीमा साहू।

मेरी प्यास ने जब मुझे मार डाला, मेरी प्यास ने जब मुझे मार डाला, निगाहों में वो लेके जाम आ रहे हैं, जिन्हें गैर समझा वो काम आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी। आइए शामिल करते हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा। आप सभी सुनना चाहते हैं गुलाम अली की गाई ये गज़ल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। गुलाम अली।

आ गया घर वस्ल की सब भी कहीं जिक्रे फिराक, वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। गुलाम अली की का ये गज़ल अभी आपने सुनी। आज की महफिल की आखिरी फरमाइश के रूप में हम शामिल करने जा रहे हैं, जो फरमाइश वो हमें भेजी है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नोहालकर, निर्मला नोहालकर, विशाल नोहालकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तावड़े, आशीष, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम उत्तर प्रदेश से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। और इसी गज़ल के लिए हमें फरमाइश भेजी है ग्राम लोहेडी जिला महोबा।

वह बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेणु, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक। साथ ही कमल सिंह जी ने भी फरमाइश भेजी है, ये फरमाइश हमें भेजी है मजनू का टीला दिल्ली से। आप सभी सुनना चाहते हैं खुमार बाराबंकवी का कलाम, फनकार हैं ए हरिहरन। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं ए हरिहरन।

0: ये कहना है उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में उनसे ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं। ए हरिहरन की गई इसी गज़ल के साथ आज की फरमाइशी गज़लों का ये प्रोग्राम महफिल अब यहीं पर संपन्न होती है। अगले मंगलवार को ठीक रात्रि 9:30 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र भास्कर शाह को दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गज़लों का प्रोग्राम महफिल FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
2: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
3: नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह, और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल।

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बाबे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं सीधे मैदान की ओर।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और ना ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया।

वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है, डियोगो माराडोना। साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हरा कर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा। It's time for...

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम से इसे जाना जाता था, तो मल्ल युद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
2: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे, तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा
1: जी।
2: और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में
1: जी जी।
2: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है
1: जी जी।
2: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
1: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे, तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं?
2: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच में अंतर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क आया हुआ है
1: जी।
2: पहले जो कुश्तियाँ थी हमारे पास मैट तो थे
1: जी।
2: मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीज़ें नहीं थी
1: जी।
2: उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी
1: जी।
2: हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते
1: जी,
2: थे
1: जी।
2: मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी हैं
1: जी।
2: और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी, लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है, जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
1: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या?

0: आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
1: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन।
0: जी
1: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती। इस चीज़ का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है, तो उसका खिलाड़ी उस चीज़ को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है। तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है, तो आप अपने खिलाड़ी को जो आपका शिष्य है उसे किस तरह समझाते हैं, या आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे। तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे, तो हम इस चीज़ की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं, जिससे कि उसके हारने पर उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज़ हमेशा तैयार रखते हैं कि बेटा ये आखिरी नहीं है, ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो, क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा। तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई उसको। आजकल आधुनिकता की, जैसे मैंने बात की, तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रही है, तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं, साइकोलॉजिकल और बाकी। बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है, इससे आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा, उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
0: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
1: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें, उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। डाइट प्रोग्राम क्या है उसको, किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे ही पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम लोगों ने अच्छा अपना मेडल खो दिया। तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर ही, और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आखिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते। और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशंस की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती है।
0: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
1: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है, जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है, आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है, तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है तो क्या गलतियाँ हो रही हैं, बार बार गलतियाँ हो रही हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज़ हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
0: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
1: प्रॉपर ये है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो, और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है। हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो या मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना फिट है। उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर

0: एरर्स कम करें, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें, तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं। जब गलतियां करेगा, और उसका सबसे बड़ा जो चीज़ होती है, मैनेजर बोला लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है। अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर, तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं, अगर ओवरलोड है तो नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, और गलतियां होती हैं। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
1: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ एक दो पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है, तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
0: देखिए, कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं। हाँ, मैच चल रहा है, कभी हो सकता है कि आप एक दो पॉइंट से आगे हैं, एक दो पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है। जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में दो मेडल आए, एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कंडीशन आप बता रहे हैं, मेन कंडीशन वही थी। हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रही, मेंटली स्ट्रांग थी
1: जी।
0: उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश, तो एज ए कोच हम ये कहते हैं, बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो, जितनी आपके पास, वो आप वहाँ पे लगाओ। साक्षी मलिक ने लगाया था, मेडल लाया। नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 12-4 से हार रहे थे
1: जी।
0: लास्ट में बाई फॉल करके 30 सेकंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती। तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है, और एज ए कोच जो भी साथ में होता है, हमें अदर कोच है, जो भी टीम कोच गया, वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है, बेटा आप अपना ऑल आउट करो, जितना है आप अपना पोटेंशियल, जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहाँ पे।
1: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की
0: जी,
1: तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है?
0: मुख्य चुनौतियां तो देखिए, हमारे पास सबसे यही थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे
1: जी।
0: मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, लोग डोमिनेट है कि हाँ हमारी बच्चियाँ जाएं
1: जी।
0: और जिसका परिणाम, आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें, तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी, मगर महिला, और उत्तर प्रदेश आज के डेट में, महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है, बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर। और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं कुश्ती, बहुत अच्छा गेम है। महिलाओं के जहाँ तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है। आप ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए लेकर आइए।
1: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना चाहिए?
0: देखिए, एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है
1: जी,
0: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है। तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है। 10 साल तक बच्चा हर चीज़ को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना है कि 10-11 साल की उम्र से आप बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अभी ये प्रोफेशनली तरफ जाना चाहता है
1: जी।
0: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
1: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
0: एशियन स्तर पर देखिए, हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है। ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफी अच्छे मेडल्स आए, गोल्ड मेडल्स लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं। इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है, और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
1: ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
0: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं
1: जी,
0: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में एक दो अंकों के अंतर से मेडल से रह गए थे, उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है, अंतिम पंगाल और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी, जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग करती हैं।
1: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
0: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है अभी एशियन गेम्स ट्रायल में, वो दीपक पुनिया से ही हारा।
1: जी
0: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत

0: बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियंस बहरीन में हुए थे, उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए, यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चंचल सिरोही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीमें हैं हमारे पास, बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में हम मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण।
4: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मधुमलहार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनिंदो चटर्जी और बांसुरी पर हैं रूपक कुलकर्णी।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मधुमलहार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिंदो चटर्जी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 11 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा

0: कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during